हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया की किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेट

नेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल

बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

卷等。किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होंगी। चुभन धातु में नहीं, वरन बेड़ियों में होती है। ये कथन महात्मा गांधी का है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 184। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें का भाग 8। कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग अनुजा जोकरकर। तबले पर संगत दी है यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनव ने। इस कार्यक्रम का निवेदन किया ममता सिंह ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर हम है राही प्यार के, और उसके बाद सुनिए 8 समाचार प्रभात। त्रिवेणी कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2। आलेख और स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित होगा संगीतकार पंकज मलिक पर। इस कार्यक्रम को पुनः सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। आज सुनिए विविधा कार्यक्रम दिन में 11 और दिन में 12 हिंदी में समाचार। दिन में 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल, और दिन में 1 तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपको भी हमारी इबारत का इंतजार जरूर होगा, तो जुड़िएगा इस कार्यक्रम में फेसबुक कमेंट्स द्वारा। दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर के समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत, यानी कि आपके द्वारा भेजे गए खतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज दिन में 3। आज दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद पोस्टमैन का भाग 2। अनुवाद हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम, निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय दोपहर 4। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर और यह कार्यक्रम चलेगा शाम 6:30 तक, लेकिन बीच में होंगे 6 हिंदी में समाचार। झरोखा कार्यक्रम, झरोखा आप सुन सकेंगे शाम में 6:30 पर, जिसमें आपको दी जाएगी जानकारी शेष कार्यक्रमों की। संध्या रंजन कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:35 और शाम 7 विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद से। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज बांसुरी वादक पारसनाथ। 7:45 होगा इस कार्यक्रम का समय। हवा महल के अंतर्गत सुनिए हास्य नाटिका यात्रा प्यारी लाल की, लेखन कल्पना सिंह, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9 और छह गीत। कार्यक्रम का समय होगा रात 10। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।
ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम होगा रात 10:30 बजे और रात 11 बजे। सुनिए विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब श्री रामचरित मानस गान का भाग 184 प्रस्तुत है।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थी। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायु वेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगी।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कल्पना जी, आज की इस कड़ी में हमें बताइए सबसे पहले कि बंदिशें तैयार करने में विषयों का चुनाव किस तरह से किया जाता है और ज्यादातर किन भाषाओं में बंदिशें तैयार की जाती हैं?
2: जी, भाषा तो अक्सर हिंदी, अवधी, ब्रिज बोली में अधिकतर पाई जाती है। कुछ कुछ राजस्थानी, बिहारी और मराठी भाषा में भी कई बंदिशें बनाई, पंजाबी में बहुत सारी बंदिशें बनाई गई। तो उस स्थान का भी असर होता है बोली पर
1: जी।
2: तो भाषा बोली भी अलग अलग थोड़ी हर एक कलाकार के आसपास के वातावरण के हिसाब से बदल जाती है। और उसके साथ साथ विषय जो है वो भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति से संबंधित वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, उत्सवों का वर्णन और गायन वादन में जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनके बारे में भी कई बंदिशें बनी हुई हैं।
1: जी,
2: तो ऐसे हर कलाकार के बंदिश बनाते समय जो आगरा जयपुर घराने की गायकी
1: जी
2: आपके गायन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपने भी कई रचनाओं का निर्माण किया हुआ है
1: जी।
2: तो आज कुमुदिनी जी ने बनाई हुई राग बिलास खानी तोड़ी में मैं एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तीन ताल में बंधी हुई ये बंदिश है
1: जी। जी,
2: कैसे समझाऊं। बिलास खानी तोड़ी, इस नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये राग तोड़ी का ही प्रकार होगा। इसका थाट जो है भैरवी थाट है क्योंकि इसमें अधिकतर स्वर भैरवी के ही लगते हैं। इसके आरोह में मध्यम और अवरोह में पंचम वर्जित है, इसलिए इसकी जाति षाड़व षाड़व है। तोड़ी अंग को ध्यान में रखकर मेंड के प्रयोग से ही यह राग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और शुद्ध मध्यम के प्रयोग से भूपाल तोड़ी से भिन्न हो जाता है। और धैवत प्रमुख स्वर या वादी स्वर हम कह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर राग है, प्रातःकालीन राग है। इसका चलन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसके आरोह में मनी वर्ज है और अवरोह में पंचम वर्जित है। इसका चलन वक्र रूप से जाता है जो मैं अब आपको बताती हूँ।

0: वाह, कैसे समझाऊं मानत नहीं मोरा जियरवा। बड़ी सुंदर रचना थी और बड़े सुंदर अंदाज में आपने प्रस्तुत किया, यूं कहें कि मोहित कर लिया अपने गायन से। अब बताइए हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगे आप?
1: अब कुमुदिनी जी की आवाज में उन्हीं की बनाई बंदिश राग भैरव में प्रस्तुत करते हैं। ताल तीन ताल एवं शब्द है शंभो गिरिजापति।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही थीं ममता सिंह। गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आज महान गायक और संगीत निर्देशक पंकज मलिक की जयंती पर उनके कुछ सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आज उनकी मधुर धुनों को याद करते हुए जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी, तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत कपाल कुंडला से, आवाज और संगीत पंकज मलिक का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल फिल्म का ये गीत, आवाज पंकज मलिक की, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरसी बारोल ने।

आरसी बोराल का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना और अब भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक वक्त वक्त है एक अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं केएल सहगल का गाया ये गीत। इस गीत की रचना की है पंडित भूषण ने और संगीत दिया है पंकज मलिक ने। फिल्म का नाम अमर सहगल।

आप सुन रहे हैं वो भूले बिसरे गाने जिन्हें आप कम ही सुन पाते हैं। ये गीत आपके लिए विविध भारती द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। तो चलिए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है स्टार। इस गीत को गाया है पंकज मलिक ने और संगीत है सुरेश चौधरी का।

और लीजिए अब सुनिए पंकज मलिक और साथियों का गाया ये गीत, जिसे लिखा है पंडित भूषण ने। इस गीत को संगीत से सजाया है पंकज मलिक ने, फिल्म का नाम यात्रिक।

रचनाकार मुंशी आरजू का ये गीत सुनिए, नर्तकी फिल्म से, आवाज और संगीत पंकज मलिक का।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरैया की आवाज में प्यार की जीत इस फिल्म का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, हुस्नलाल भगतराम का संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं युगल गीत। लीजिए आगाज करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत शिवहरी का, फिल्म का नाम सिलसिला।

आइए अब आपको सुनवाते हैं घुंघरू फिल्म का गीत मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजों में। अनजान के बोल हैं और धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं लम्हे फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और ए हरिहरन की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई शिवहरी ने।

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हम है रही प्यार के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अवतार फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना करेंगे। बाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा

0: परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मामकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद आदि ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
3: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
4: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी

0: और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
4: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है, उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ और चमकती आंखों से प्यार छलकाती, मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्रछाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियाँ, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियाँ हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदाई होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आँखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुँह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

माँ की ममता निस्वार्थ है, बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है, इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

इस जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से दिल्ली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। हमारा अगला कार्यक्रम चित्रलोक होगा बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस आरक्षण फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। रचना है प्रसून जोशी की, शंकर एहसान लॉय की धुन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: एक मैं और एक तू, इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी, शिल्पा राव, निखिल डिसूजा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अमित त्रिवेदी का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सोना मोहापात्रा रविंद्र उपाध्याय की आवाजों में तलाश फिल्म का गीत। जावेद अख्तर ने इसकी शब्द रचना की है, राम संपत ने इसकी लय बनाई है।

एनीबडी कैन डांस यानी कि एबीसीडी इस फिल्म का गीत सुनिए। मोहित चौहान प्रिया पंचाल के का गाया ये गीत, साथ दिया है तन्वी शाह और डेनी स्क्वरीज ने, और इस गीत को लिखा है मयूरपुरी ने, सागर जिगर का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अश किंग शिल्पा राव और शेखर रवि जानी की आवाजों में ये गीत। बैंग बैंग फिल्म से अन्विता दत्त और कुमार का लिखा, विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया हुआ।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे हैं आज नए गीत। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का सुकून छिपा होता है। वो खुद थक जाती है लेकिन हमारी थकान पहचान लेती है। हमारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सपने चुपचाप समेट लेती है। मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत। अनुपम अमोद की आवाज इरशाद कामिल की रचना, धुन बनाई है अनुपम अमोद ने।

0: आखिरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
5: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौत।

0: पिता।
1: पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना,

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुन्नलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज़।

0: इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी, कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।
1: बहुत

1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

0: पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।
1: दो नैना मतवारे

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिक आई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जाने माने गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था, जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुट जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया
1: प्रमिला जी।

0: अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं
1: जी जी
0: उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं,
1: जी
0: राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह
0: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे, तो
1: हाँ
0: एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए, बहुत
1: हाँ
0: यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम,
1: जी
0: क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह।
0: जी,
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी दादियाँ का?
0: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
1: जी
0: जो दिन गुड़ी पड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पड़वा के
1: बिल्कुल
0: दिन,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है।
0: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
0: मुहूर्त माना, तो
1: क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे जिस
1: हाँ
0: दिन, उनमें पड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी
1: जी,
0: पड़वा।
1: क्या बात है।
0: जी
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: हैं।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्ना दा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी
0: मन्ना दा
1: जी
0: के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा से मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
1: जी
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी, 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गए, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तू मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ
1: ओ
0: जरूर
1: क्या
0: गाओगी
1: बात है।
0: बहुत मजा आया
1: वाह
0: उससे,
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फेहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: लिस्ट
1: आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: क्या अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ हाँ
0: इस तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
0: हाँ जी,
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
0: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या बात
0: आई
1: है।
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना
1: गायिकाओं ने अलग
0: है।
1: अलग
0: हाँ,
1: मौके पे इसे
0: ऐसे मैं
1: गाया है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी,
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं।
1: जरूर।
0: बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं,
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई,
0: अच्छा,
1: मुंबई,
0: मुंबई में ही,
1: गिरगांव में, गिरगांव में
0: गिरगांव,
1: हमारा रहना
0: जो
1: भी वहां
0: खास
1: था।
0: मुंबई जैसे
1: सब
0: कहा जाए।
1: चाल थे सब
0: जी
1: ऐसे,
0: जी जी जी
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जैसे पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर के
1: आती
0: सब
1: थी,
0: काम
1: सब
0: किया करते
1: मिलकर
0: थे।
1: काम करते थे,
0: वाह, हाँ
1: बहुत मजा आता था। लेकिन पूरा
0: हाँ
1: एक चाल कुटुंब जैसा था,
0: जी
1: और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और
0: जी
1: सब
0: जी
1: लोग मजे कर रहे हैं, बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में 4 आने की चाय कभी नहीं पी जाके,
0: अच्छा,
1: लेकिन
0: हाँ
1: घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा
1: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
0: जी जी
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
0: हाँ
1: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
0: अच्छा
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
0: अच्छा
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
0: जी
1: और
0: जी
1: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे,
0: ओ
1: अगर दादर में क्लास होता
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
0: अच्छा
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह
1: पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
0: जी
1: वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
0: जी जी
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
0: हाँ
1: दिल्ली में,
0: हाँ
1: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा,
1: संगीत शारदा,
0: जी जी
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी,
0: ओ
1: कि मेरी
0: अच्छा,
1: आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: पुरुष के गायक के लायक थी, और
0: अच्छा
1: हाइट भी अच्छी थी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी जी जी
1: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
0: हाँ,
1: स्कूल
0: चूंकि ये महिला
1: के
0: विश्वविद्यालय है
1: महिला
0: तो
1: नहीं,
0: सारे,
1: वो स्कूल की बात कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
0: अच्छा
1: तो वो हमने उधर किया
0: ओहो
1: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
0: हाँ,
1: दिल्ली गई यूथ
0: क्या बात,
1: फेस्टिवल के,
0: अच्छा अच्छा
1: बाकी
0: अच्छा
1: फ्रेंड्स वगैरह थे साथ,
0: हाँ हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था,
0: क्या बात
1: बहुत
0: है।
1: मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर
0: सके?
1: जरूर।

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: दिया था।
0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती
0: थी। पुरुष पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
1: इस
0: नाटक में निभाई थी।
1: हाँ जी।
0: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था,
0: जी, जी।
1: हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला
0: जी,
1: में
0: जी।
1: कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है नहीं पता। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
0: हाँ।
1: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके,
0: जी जी।
1: तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की,
0: हाँ।
1: तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है,
0: हाँ।
1: और 58 को शादी हो गई 16 साल की।
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया और मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
0: जी
1: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनडीटी में,
0: हाँ
1: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
0: वाह।
1: और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी,
0: हाँ
1: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक झिझक होती है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी
0: अच्छा।
1: बच्चों को।
0: हाँ।
1: तो 62 में मैंने एमए किया फिर,
0: वाह।
1: और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तलत साहब के साथ, एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब मेंबर थे, तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ
0: हाँ
1: फंक्शन हुआ लायंस
0: जी
1: क्लब का,
0: जी
1: तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे, और मुझे आए उन्हें पूछे कि आप चलेगी क्या, मैंने चलेगी कूदते
0: दौड़ेगी
1: जाऊंगी कूदते जाऊंगी।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, तीन
0: क्या बात,
1: महीने का वो टूर था हमारा,
0: क्या बात है।
1: और दो बेटियां, एक
0: हाँ
1: चार
0: हाँ
1: साल
0: हाँ
1: की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं
0: हाँ
1: बिंदास चली गई, और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
0: हाँ हाँ
1: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है,
0: जी।
1: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके,
0: जी
1: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके
0: अच्छा
1: गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे।
0: वाह,
1: बहुत मजा
0: क्या
1: आया
0: बात
1: टूर
0: है।
1: में उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को
1: और
0: आपने याद
1: तलत
0: किया,
1: साहब तो
0: तो कोई गाना उनका
1: ओ
0: इस वक्त हम सुनाए अपने
1: ओके
0: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
1: मराठी में गाने थे।
0: जी
1: हाँ
0: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी,
1: जी
0: फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: पहले
0: इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गए?
1: वशिष्ठ तरस साहब के साथ गए, फिर
0: हाँ
1: उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा,
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था
0: जी
1: फिल्मों के
0: जी
1: लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी,
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, वो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरियबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते
0: अच्छा
1: थे तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: उनको,
0: जी जी
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती है वहाँ शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमते हैं, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी जी
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
0: जी
1: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
0: हाँ
1: छुट गए फिर मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि आपने तीन चार गाने गा के ये
0: हाँ
1: लोगों को सामने से सुनते बैठू,
0: हाँ
1: बहुत ही भाग्य था
0: क्या
1: मेरा
0: बात
1: इस
0: है।
1: बारे, रफी
0: पर
1: साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: डुएट नहीं
0: नहीं
1: गाया
0: गाया? अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
1: जरूर
0: सुने तो कौन सा
1: जरूर
0: होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले
0: मतलब
1: दूसरों के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों को टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: वो हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंक के, इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए, अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
0: अच्छा,
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ,
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला भी, वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में। मेरी
0: अच्छा,
1: सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है,
0: क्या बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपने वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है,
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी कभी
0: अच्छा
1: अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी
1: साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
0: हाँ हाँ
1: याग्निक का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगा कर है इस फिल्म का
1: दम लगा
0: गाना
1: के
0: है।
1: है
0: जी
1: उसका,
0: जी गीत
1: पता
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: है।
0: हारमोनियम
1: हाँ,
0: पे, तो
1: मोह मोह के है, और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा से
0: है, ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या? आप
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी
0: हाँ
1: गीता
0: हाँ
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है
0: आशा जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता है।
1: नकल, नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो आवाज
0: बिल्कुल
1: डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी
1: हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह
1: आजकल
0: रही
1: वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है। मैं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही लता
0: बिल्कुल
1: मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते थे।
1: चौबड़े में
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है।
1: जी जी
0: क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, फिर जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट। अब
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: जो
0: जी
1: वराइटीज वो
0: हाँ
1: करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं
0: खैर
1: अभी
0: बिल्कुल सही।
1: है तो ये जो बड़े बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे
0: सही बात,
1: ना
0: बिल्कुल सही। मन्नता की बात करते हैं,
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्ना दा के
0: किया,
1: साथ का
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र,
1: रामचंद्र।
0: तो मन्ना दा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ
1: बड़ौदा में मन्ना दा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
0: जी।
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशंस बहुत जरूरी है, नहीं तो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी जी
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में, तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपने आवाज में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और
0: अच्छा
1: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
0: ओहो
1: रियाज करके,
0: क्या बात।
1: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला
0: हाँ
1: कि ज्यादा नहीं करना,
0: हाँ
1: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में बहुत ही,
0: अच्छा
1: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ ज मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: हाँ
1: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
0: जी जी
1: बाम्बू चा वना च ज ज बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
0: हाँ
1: शील सजणे सजणे
0: हाँ
1: माझाच पाठी,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: उनके
1: लाइन
0: लिए
1: थी,
0: टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत
0: रहा
1: बहुत 3 बार
0: होगा
1: हुआ 4 बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो
0: जी
1: उन्होंने
0: जी
1: वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
0: हाँ हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: बराबर ये
0: नुक्ता लगा
1: करके
0: के,
1: लाइन
0: क्यों
1: में,
0: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें?
1: हाउस ऑफ बैम्बू
0: जी।
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द हा जिसे मॉड्यूलेशन
0: हाँ
1: फॉर द की, उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
0: जी।
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो बांबू से घर बांबू से दार बांबू ची जमीन पिवळी शार बांबू से घर बांबू से दार बांबू ची जमीन पिवळी शार बांबू चा घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला ला ला ला ला झुलवित राहिल पापा पापा तुलाने मला नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: उनका तो क्या
0: वाह वाह। मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
1: जी जी जी।
0: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है।
1: हाँ।
0: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने।
1: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं।
0: बहुत से
1: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन।
0: वाह
1: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना था।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग
0: जाता
1: जाएगा,
0: है तू,
1: और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी
0: बहुत बहुत ही
1: लिखावटी,
0: संजीदा गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको
1: जी
0: मंच पर गाने का मौका
1: जी
0: मिला
1: जी
0: है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ
1: रफी
0: आपकी
1: साहब तो
0: यादें।
1: मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके
0: अच्छा
1: उनके साथ बहुत सारे टूर किए,
0: हाँ,
1: साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए
0: ओहो
1: रफी साहब के
0: क्या
1: साथ।
0: बात, हाँ
1: और जो उनसे सीखा है ना,
0: जी,
1: मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी।
0: ओहो
1: हाँ, इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव।
0: वाह
1: और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक
0: जी,
1: पत्रकार परिषद थी,
0: हाँ,
1: कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है,
0: जी
1: लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे।
0: जी,
1: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना,
0: हाँ,
1: उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूं, तो मैं और
0: ओ
1: क्या करूं, और
0: क्या बात,
1: किसमें हाथ क्यों डालूं मैं।
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है।
0: ओ हो,
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: वो
0: जी
1: कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
0: हाँ
1: तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें
0: हाँ
1: तान भी थे, तो वो गाया, तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी
0: जी,
1: है।
0: क्या बात, वाह वाह।
1: बहुत अच्छा
0: अब
1: लगा
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं,
1: जी।
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे
0: हाँ,
1: सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो
0: विक्टोरिया
1: मिल
0: नंबर
1: गए हो,
0: 203।
1: हाँ,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: हंसते
0: जख्म,
1: जख्म,
0: जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: हंसते
1: और
0: जख्म फिल्म
1: हाँ
0: का, जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी
1: जी,
2: जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया,
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की, उस वक्त रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था, घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं टूर कैंसिल, क्योंकि यह सब अचानक आया, प्रीप्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं, मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका। और बहुत जल्दी इत्तला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे, वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन बीन ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे, तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है, वो मेरे लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए, बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए। तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं, जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह,
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के, उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
2: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा,
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोल्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों। तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए,
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते, उन्होंने हुए देखा,
2: गाते देखा तो उन्होंने
1: तो वो भी गाती वो आप...
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कचरा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
2: बड़ी बेटी एकदम ए हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
2: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
2: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
1: जी,
2: वो
1: जी।
2: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डाल भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने। तो वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद।
1: क्यों नहीं यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं?
2: अरे बापरे।
1: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और अमर जी कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है,
1: जी
0: क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या
1: क्या देंगे,
0: सुनाएंगे।
1: क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या खजाना है विविध भारती का।
0: जी, तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी।
1: देखिए ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की।
0: बिल्कुल।
1: तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल
1: तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार।
0: जी,
1: और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं।
0: मैं नाम बता रही हूँ अब, और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा।
1: बिल्कुल ठीक
0: तो
1: कहा आपने।
0: आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल।
1: जी
0: सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे?
1: सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें।
0: जी जी
1: रीमा लागू जी का।
0: बिल्कुल। रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्मों
1: जी,
0: में।
1: लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था।
0: जी,
1: दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं। श्रीमान श्रीमती में तो ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं में ये सास बनी थी।
0: और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया
1: पिलगांवकर।
0: पिलगांवकर उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था।
1: अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भादभड़े।
0: जी,
1: 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया।
0: मात्र 59 वर्ष की आयु।
1: जी,
0: बहुत कम उम्र में वो चली गईं। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था।
1: हम ये भी

0: पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत
1: जी
0: चेहरे, बहुत ही
1: अच्छी स्टार कास्ट,
0: स्टार
1: कितनी
0: कास्ट थे।
1: जबरदस्त जी।
0: अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात्य परिवार की एक
1: मदर
0: कमांडिंग
1: हो,
0: मदर हो,
1: मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ।
0: ग्लैमरस माँ। ये बिल्कुल सही शब्द आपने
1: जी
0: पकड़ा।
1: जी
0: और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी और फिर वहीं अटक गई।
1: और कितनी हसीन लगी है उस फिल्म में,
0: बिल्कुल
1: वात्सल्य की मूर्ति रीमा लागू, और उनके पीछे वो छुप के माधुरी दीक्षित का कहना, माई री माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अमर जी आपने कहा था गीत सुनाए
0: बिल्कुल, गाना
1: तो
0: सुनते हैं उसके बाद बातचीत सुनेंगे।
1: जी।

0: मनीषा जी, गाना तो आपने सुनवा दिया, लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है इनकी।
1: बिल्कुल, और रीमा जी की एक बहुत प्यारी बातचीत हमारे पास है।
0: तो फिर देर किस बात की?
1: बिल्कुल, बातचीत उनसे की थी यूनुस खान ने, तो उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू।
2: रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
3: शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी।
2: जी जी।
3: मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था, तो
2: अच्छा।
3: कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था
2: जी,
3: जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी।
2: ये जो रेडियो का दौर है, ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है।
3: एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है, जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। और भी कंपटीशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है, ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आजकल।
2: यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था?
3: वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी, तो आई थिंक वहां से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज।
2: घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे?
3: हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं। फिल्में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया।
2: बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है?
3: जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी।

0: उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ।
1: कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स, वो सारा माहौल कैसा था उन
0: एक्चुअली
1: दिनों
0: इट्स
1: का?
0: वेरी मेस्मराइजिंग यू नो। एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है
1: जी
0: यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं,
1: जी
0: यू
1: ग्रो करते हैं एक
0: ग्रो
1: तरह से।
0: करते हैं एज एन आर्टिस्ट, और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है फिर।
1: खाने पीने की कोई सुध नहीं, और वो
0: हाँ, एक
1: जो
0: वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी।
1: ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था?
0: ऐसे प्लेज मैंने काफी किए हैं बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई वो था पुरुष करके,
1: जी,
0: जयवंत दलवी जी का प्ले था जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था,
1: बाद में उन्होंने दोबारा
0: वो हिंदी
1: किया।
0: में हुआ
1: जी
0: मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट आई
1: जी
0: कैन से।
1: वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं उन्होंने आपको मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना, लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी। शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूं तो।
0: जी मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था तो इसलिए मुझे हंसी आई,
1: अच्छा
0: मैं रोल नहीं था मेरा कुछ, मुझे लावणी से बहुत लगाव था। ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ यू नो।
1: जी
0: सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था, वो लगातार दोनों फिल्म मेरे ख्याल से, कलयुग भी आई थी उसी वक्त एंड आक्रोश भी आई थी,
1: जी
0: उसके बाद अगेन देर वॉज अ बिग गैप।
1: लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थीं,
0: हाँ, सिंहासन आई थी और दो तीन,
1: माझा घर माझा
0: हाँ,
1: संसार।
0: माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपट आई, ननन भौजाई आई थी कह
1: तो
0: सकते हैं।
1: आपकी मराठी सिने यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी?
0: वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, तू सुखी रहा है, काफी फिल्में की थी मैंने, बट सिंहासन फिर ये ननन जो अभी मैंने बताई वही फिल्म में मैंने मेरी शुरुआत हुई थी। कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में एज अ लीडिंग लेडी, उसके बाद फिर गैप आया एंड देन
1: और रंगमंच तो आपका चल ही रहा
0: हाँ
1: था।
0: वो तो चली, वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था।
1: अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ?
0: एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था, उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा
1: जी
0: और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में, तो मैं वहां गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग, तो मुझे पता नहीं उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वॉज नरेटिंग मी द स्टोरी। मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे वैसे ही आप शूट करेंगे, बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे। मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है बताया कुछ जाता है दिखाया कुछ और जाता है, तो
1: जी
0: बोले नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट यू नो। तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं, एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट, एंड राजश्री पीपल दे आर रियली वेरी नाइस पीपल, लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है यू नो,
1: जी
0: तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है, तो
1: जी
0: ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है।
1: मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने माँ की भूमिका की होगी,
0: जी
1: और उसके बाद फिर एक
0: फंस
1: तरह से
0: गई
1: वो
0: मैं
1: रिवाज।
0: फंस गई मैं
1: मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी?
0: मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है, हंसने हंसाने में बड़ा मजा आता है, सीरियस में थोड़ा थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को यू नो, बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट आई फील, लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है, बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है, तो
1: कैसे
0: ऐसे
1: वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था?
0: मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है,
1: जी
0: बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल ही पूछती नहीं हूँ, एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की, वेन एवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट, तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है, तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं, एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं, एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चालसी बट उससे थोड़ा बढ़ के, बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफेयर, टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफेयर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैंने देख चुकी थी मैं जहां रह रही थी तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं, या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो

0: थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली।
1: जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से
0: निकल आया,
1: बाहर आया तो कैसा लगा?
0: अच्छा लगा। बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये
1: जी
0: रोल का ग्राफ है, वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है। तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं, उस
1: जी
0: वक्त पता चलता है। बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है, देन वी टेक द प्रिकॉशन कि पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, तो जब मैंने वो सीन किया, उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ, व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे। काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा, जब आपने, आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि ये
1: मतलब
0: फिल्म
1: अभिनेत्री
0: का
1: एक
0: एक,
1: तरफ हो गई और
0: हाँ,
1: कैरेक्टर आगे
0: तो
1: आ
0: कई
1: गया।
0: लोगों को ऐसा कि नहीं नहीं माँ है, मार कैसे सकती है। अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल।
1: अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं को बड़ा यादगार मानती हैं जो आपके अपने दिल के करीब हैं?
0: आशिकी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, जहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है औरत की। बिकॉज ज्यादातर के अपने यहाँ पे हिंदी फिल्मों के रोल्स एक ही ढांचे के रहते हैं, तो उसमें अलगपन बहुत कम
1: जी
0: जगह मिलता है, तो उसमें से इसलिए मुझे आशिकी का जो प्रोग्रेसिवनेस था उस औरत का दिखाया था, सिंगल लेडी हु इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो ग्राफ मुझे अच्छा लगा था। बाकी ऐसे नहीं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है।
1: जी
0: और एक मराठी फिल्म आई कैन से आपली माणसं करके था, उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: किस तरह का रोल था?
0: इट वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, बट इट वॉज, आई डोंट नो, मुझे करते वक्त मैं अभी तक उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में है।
1: रीमा जी, आप किस तरह का संगीत पसंद करती हैं?
0: मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है, और हिंदी फिल्म में फिल्मों का संगीत या मराठी गाने, बट वेस्टर्न का मुझे पता नहीं है, या शायद बचपन से कभी सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं था उस वक्त, तो मम्मी और डैडी के साथ मैं कभी क्लासिकल गाने बहुत सुनती थी, कोई प्रोग्राम्स को जाती थी, तो क्लासिकल अच्छा लगता है, और लाइट
1: आज भी
0: बंगाली
1: शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जा पाती हैं आप?
0: कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभार अगर वक्त मिला तो मैं जाती हूँ। किशोरी आमोनकर जी का गाना मैंने सुना है, देन वीणा सहस्त्रबुद्धे जी मुझे अच्छी लगती है, और देवकी पंडित है,
1: जी
0: काफी काफी आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है उनके गाने, भीमसेन जोशी का मैंने गाना सुना है, जो
1: क्या
0: मुझे
1: बात है।
0: बहुत ही, यानी वो एक प्रेरणा मिलती है उनका गाना सुनो, उनके उनकी जो आवाज है ना, उससे अंदर हो जाता है एंड यू गेट द
1: जी
0: स्ट्रेंथ।
1: बिल्कुल, भारतीय संगीत का गंधर्व सुर है वो
0: जी
1: एक तरह
0: बिल्कुल,
1: से।
0: मैं बहुत आवाज की उनकी तारीफ करती हूँ।
1: आइए एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल, भीमसेन जी का एक अमोल जी की फिल्म थी
1: वो गाना मुझे,
0: अनकही,
1: हाँ
0: उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना है भीमसेन।

0: बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार, ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते
1: सच
0: हैं।
1: में
0: खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया, सज्जन,
1: जी
0: जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे वो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्र दराज लोग नहीं है, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं।
1: उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का।
0: जी
1: मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाएं।
0: सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको।
1: लेकिन पहले
0: फिलहाल उस म्यूजिक को सुन लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको बड़ा मजा आ जाएगा।

0: 맞고 전화해 줘. 맞고 전화해 줘.
1: ये थे विक्रम और बेताल के सज्जन, और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था, और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित तो जाएंगे।
2: इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे, और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था, और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुकाव शुरू से रहा, और ये गीतकार बनना चाहते थे
1: जी।
2: और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए, क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी, आप बेहतर जानते हैं।
1: गढ़ था उस समय फिल्मों का
2: जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय, वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी, और यही वो दौर था जबकि इनको मासूम, चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं, और वहां से ये आ गए मुंबई, और यहाँ आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब, जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब लोग जानते हैं उनको,
1: ऐसे बड़े बड़े नाम जी।
2: और उसके बाद तो इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रूपए से शुरुआत हुई थी इनकी।
1: 35 रूपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन ने लिखे थे, और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे। एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे, और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
2: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी, और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
1: क्या बात है,
2: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
1: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे, मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं, तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
2: अब ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है, और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
1: जॉनी मेरा नाम जी, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को,
2: राय साहब भूपिंदर सिंह
1: जी,
2: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रणजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है।
1: जी हाँ,
2: वो
1: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है,
2: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी,
1: याद दिलाइए,
2: चलती का नाम गाड़ी।
1: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार सज्जन साहब का था, और थोड़ा सा जी हाँ थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
2: बिल्कुल
3: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट से या कि हीरो से, आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
4: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर से हमने ज्वाइन किया, वहाँ कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया, फिर फिल्मों में हीरो बने, काफी अरसे तक हीरो रहे, नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुड्ढे हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे।
3: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
4: बिल्कुल नहीं अजीब लगता, हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
3: आजकल आपको अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्म में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर?
4: नहीं नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था और इत्मीनान से फिल्म बनती थी। तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो कि वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे। और उसके बाद में जब दो दो शिफ्टें, तीन तीन शिफ्टें, अब कोई आदमी सिर्फ दो घंटे तीन घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में पांच छह जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का? और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके नजर घड़ी पर है, अभी आया है, अभी घंटे डेढ़ घंटे में भाग जाएगा, तो अब वो बात रही नहीं, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके वन मैन शो करते हैं, अपना मतलब एक शो करते हैं, समझो कि छह आठ महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है। शाइलॉक भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं, समझे, गुरुदेव टैगोर का करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूं इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं। हमने अब तक 74 शो किए हैं, समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए, वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते। अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़। इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए ना तो दखल देता हूं और न ये उम्मीद करता हूं कि मेरे दखल देने से यहाँ कुछ होने वाला।
3: मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही?
4: सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर, बस ये
3: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिली, थिएटर में या कि फिल्मों?
4: हमेशा थिएटर में, हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए? हम जूनियर आर्टिस्ट थे, समझे, अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया है कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय, समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय।
3: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल, तकरीबन 90% लोग हैं, वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, किन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
4: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है, समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है, समझे, और कम से कम वहाँ 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग,
3: काफी लोग
4: जो शहर, जो शहर
3: मुंबई
4: हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर, समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है, समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है, समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, समझे, एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
3: जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप भी फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं?
4: नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में देखिए
3: पोएट्री वगैरह लिखते हैं क्या?
4: ये भी लिखता हूँ, इसमें चोरी थोड़ी करता हूँ, हमने कुछ गीत लिखे हैं, समझे। हम शुरू शुरू में मतलब इंडस्ट्री में जब आए तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर ही के तौर पे आए थे। फनी मजूमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे,
3: समझे। आप क्या क्या करते थे?
4: कमाल है, वो मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है, समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूँ। जब चीन ने अटैक किया था टू की बात है शायद, समझे। उस वक्त हमने काफी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, 4 एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं, समझे। और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं, ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये तो आ जाती है, तो लिख देते हैं, समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता हूँ, और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ। तो हम अपना जी बहलाते रहते हैं, समझे। तो वो है, बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, समझे। और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो सारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन से सरचार्ज्ड हो जाएगा तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, समझे। तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं और वायदा किया अपने आपको 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है।
2: मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुन के सचमुच बहुत अच्छा लगा।
1: जी, बहुत अच्छा लगा।
2: सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया।
1: जी हाँ।
2: अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई सन 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले, तू बोला तो मैं चला।
5: सच कहा विक्रम, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं।
1: श्रोताओं, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता। वैसे ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की और बन गए निर्माता निर्देशक। और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं?
2: प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि डेंटन टेन, वो फिल्मों में नहीं होता है, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं।
1: आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की
2: ये वो जोर की फिल्म है ना, कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा, फिर क्या होता? क्या होता, अमिताभ बच्चन आता और मोटरसाइकिल चलाता और उसके बाद क्या, डेंटन टेन, बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे। हाँ। सुनते थे, तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो ढेंटन टेन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी।
1: हाँ।
2: और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा, आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ।
1: बताइए।
2: वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता।
1: बात है, बहुत प्यारा गीत है।
2: ना मानता ना रूठता, ना बार बार हंसता, ना जार जार रोता।
1: तो अमर जी, आपने इतने प्यारे गीत को याद दिलाया है
2: जी,
1: सुनना पड़ेगा और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को।
2: तो चलिए सुन लेते हैं। अगर

0: अमर जी
1: जी,
0: क्या गाना, वाह। बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी,
1: 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बहुत कुछ खाली हो गया। लेकिन तो खैर, सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, ये अटल सत्य है। बहरहाल 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
0: प्रकाश
1: मेहरा साहब का। और फिर ये आ गए मुंबई। आए तो थे ये गीतकार बनने, मनीषा जी
0: जी,
1: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं, फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे, उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी,
0: शशि कपूर साहब की,
1: बिल्कुल। और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
0: कौन सा वाला गाना?
1: हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो इन्हीं का था। और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
0: याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आपकी जबान से।
1: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब।
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में, मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया,
0: जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर।
1: मनीषा जी, फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
0: बिल्कुल,
1: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए।
1: अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
0: जी।
1: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
0: जी।
1: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जलों का,
0: दिल जला के,
1: प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया। एक और था गाना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती है गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
0: आप ही बता दीजिए ना।
1: गीतकार गुलशन बावरा थे वो।
0: क्या बात है,
1: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा।
0: देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई।
1: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मैं तो रोमांटिक फिल्मों का हीरो हूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की
0: जी।
1: अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने, सलीम साहब ने उनसे।
0: अच्छा।
1: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए। और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास, लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है, अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
0: जी,
1: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे,
0: यही मुंबई में।
1: और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
0: जी।
1: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे। तब जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
0: क्या बात है, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
1: अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार
0: जी। हाँ।
1: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
0: मनोज कुमार,
1: उसमें एक खान का किरदार था।
0: अच्छा।
1: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे।
0: वाह
1: और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
0: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओं, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दें जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अभी सुनवाए इस रिकॉर्डिंग को।
1: बिल्कुल।
0: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी।
2: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ, मुंबई किस उम्र में आया?
3: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। फिल्म डिवीजन में इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थे। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलने। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को, मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहां दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे वहाँ, मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का, विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है। अभी माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कह लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं है कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है भाई, काबिलियत है तो करो यार, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला तो विनोद ने बोला कि मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आपके यहाँ काम करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
2: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे,
3: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
2: तो प्रकाश जी, आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री?
3: आए थे राइटर बनने। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वहीं हमारी फिर दोस्ती हो गई, काम करते करते मोहन सहगल के और उसके, तो हमारे दोस्त थे इंदुभूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदु भूषण से दोस्ती हो गई। इंदु भूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदु भूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदु भूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे एक साल मोहन सहगल के साथ और काम करने दो, विल मेक ए फिल्म। और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से मोहन सहगल के, वहां से एस एम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब एक साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। एक साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदुभूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की, नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जब मोहन सहगल के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई, किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपा राय जयराज को लेके अमर सिंह राठौर बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, एक फीएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोहन सहगल का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा, यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तू निकल नहीं सकता, जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज टू बिलीव इन डेस्टिनी, आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसेरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो सिनेमा जाएगी शुरू हो गई, पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी रिलीज के एक महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांदरा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था, आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपए कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वाकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, हसीना मान जाएगी में वो थे, हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे, तो अपने घर से लाके हमें देते थे, बोले मगर एक हफ्ते में ले लूंगा और हम एक हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वाकर से पूछा कि एक ऑफर है नजाड़ वाले की और एक ऑफर है मलिक चंद कोचड़ की, उनकी 4 ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है, एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले।
2: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तरह तरह के काम किए आपने।
3: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
2: जी,
3: बिकॉज आई यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पे सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
2: तो ये जो जंजीर की हम बात करें,
3: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे
2: जी,
3: बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, उनकी सारी उम्मीदें थी। ओबेरॉन की फिल्म बदहार बन रही थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया, मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत है, तो फिर मैंने जया से बात की, जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा भाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा भाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, दो ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे, नहीं मैंने केदार कपूर को बोला है वो बना रहा है। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया, और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है, अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली इंस्पेक्टर और पठान के आगे? बोले यार आगे उसे मालूम है वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे। और हंसा बहुत वो। मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना Keep on changing the image. That's why I have made मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाई। और मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे, तो राज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा गरन बहुत तारीफ करता है, चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कहा राजी अभी 4-5 दिन में सेंसर हो जाएगी, तो मैं प्रिंट आपको, नहीं नहीं नहीं मैं थिएटर पर देखूंगा यूसुफ भाई से, बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है राजीव की संगम है, आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता है।

0: जाएगा।
1: रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और
2: हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं।
1: जी हाँ,
2: इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं।
1: और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे, इस उम्मीद के साथ अब इजाजत लेते हैं, क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है।
2: बस
1: तो
2: निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में,
1: और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत। तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
2: और अमरकांत का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त

0: लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त की संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

पल पल छिन छिन पड़े न चैना, बात तक थक थक गए नैना, पल पल छिन छिन पड़े न चैना, जमुना तट पे बंसी बट में प्रेम रंग में डूबी राधा बोली हाय बोली।

0: भजिया हरे हरे चांदिया जा चांदिया जा चांदिया।
1: तेल मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत बद्ध किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
2: एक बेमिसाल शायर
3: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
2: एक शानदार शख्सियत
4: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
2: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
4: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
2: कुछ बेमिसाल किस्से
4: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
2: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जाने

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी, इस फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना, कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब डीजे यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार। दिन का 1 बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय, कितना मिलता जुलता है ये समय। और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफर में। तो सुरीले सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता संवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतजार। तो ये है आज की इबारत और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मजेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखिए इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफर हो सकता है। पर आपके गीतों का हमने इंतजार किया, एक आध ही गीत दिखा सारे गीत तो हमें नजर नहीं आए। चलिए, आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इबारत में शामिल शब्द समय, हर पल, दुनिया का मेला, गीत, बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का दिल, नगमा, फसाना, कौन सा वो ही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी, इंतजार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने में, बहार की पायल तो झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं। ये अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर

और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है, समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप, हा हा हा क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं हकीकत है, हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा, आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपकी फरमाइश जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं, देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ एक सवाल है, सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का ज़माना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत, माँ सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता, और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है, दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफर। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है, ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर, जो बहुत ही ख़ास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है। मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांधकर समय देखा, जिसमें सेकंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:30 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के ज़माने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी, जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज़ घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान, मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज आवाज में टन की आवाज होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताज़ा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नजर उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टनटन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और जरा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत।

बहुत बहुत शुक्रिया, फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात। अपनी एचएमटी के रिस्ट वॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी एचएमटी की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे, तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे। और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन्होंने उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी, अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी

0: मिली थी बाद में, सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया है कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूँ क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है?
1: आई बहार आज, आई बहार बहार आज, आई बहार गुलशन में।

का फूल फूल के दिया कोने को है आज फूलों का फूल फूल के दिया कोने को है आज थालों में तंदल आने को है आज प्यालों में उबटन आने को है आज थालों में

0: बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन की ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ

छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूं तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले, क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है, और बड़ा प्यारा सा संदेश। अम्मा तो गोंद की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है भाई। हाँ सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज़ के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज़ है, अभी उस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है, तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन के वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चप्पल रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की है।

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता, प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है, उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ और चमकती आंखों से प्यार छलकाती, मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्र छाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियाँ, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियाँ हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है।

माँ की ममता निस्वार्थ है। बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो, जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है। इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एंद पोरुळैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों की

0: जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी

0: नई शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज़ में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी करना तुमको पड़ा है नीचे उतरला।
0: अरे

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी। नु, नु, नु, नु, नु, नु, नु, नु, ये

0: मामा जी न देख तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या, मुझको भी अब

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 13

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है

मोहम्मद रफी का गाया, औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत ने पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
4: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है?
5: ये जरा गंभीर मामला है। हाँ? देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
4: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
5: है, बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
4: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
5: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ। उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
4: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने ये भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
5: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
4: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
5: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा। अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
4: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया।

0: शिव का मेरा अम्माल का लड़का मर गया।
1: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
0: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
1: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
0: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने।

0: माजी
1: आओ कंदस्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माजी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, हाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माजी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माजी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माजी, यो ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माजी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदल कर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है।

0: सोच लो ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा।
1: नतीजा एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो।
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ ना होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्हीं ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई है, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछे और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछे, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछे है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस नासमझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूर अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन? अंकल सिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो।
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू की एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है, क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। है? तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
0: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ, अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी?

0: क्या हुआ? किसने ये खून किया?
1: हाँ करंदे स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है? नहीं!

0: क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब?
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ये है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसे श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी, इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। माँ, मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी

गोद में तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है।
1: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंदे स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ, ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूं? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइनें भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं और ठहर गए।
2: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चरें मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे, वहाँ
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास, डार्क करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज़्यादा पिक्चर मैं डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा मैं पाली हिल पे हूँ, आप आ जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी दिलीप कुमार लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने
1: अभी। अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे,
1: हाँ, वो
0: रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सिटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप आ जाते थे बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, असिस्टेंट वाइफ हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए, उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जौहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जौहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायरेक्टर ये लिखते हैं, तो कब बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जौहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना,
0: उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जौहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला, जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जौहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे, तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करते हैं तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मेरे जावेद मिल रहे हैं, जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ
0: लूंगा 5 लाख, मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उतने पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, फिर गाने वाले अब था, उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं,
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लो, मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे
0: क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
1: हाँ हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ।
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का, तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं तभी पिक्चर बना थे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति
0: नहीं शक्ति नहीं इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो
0: और वो मैंने ओके किया मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट में यश चोपड़ा को भी सुना दूं
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी
0: उनको भी नहीं बोल सकता जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था मेरी हिम्मत नहीं थी आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ बहुत अच्छा।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी,
1: ये ऐसे फिल्म करना था, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी वो थे। और जब मैंने नूरी प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी झुककर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी झुककर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए,
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी, जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही थी, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको वो सब डिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी झुककर ने
0: दिलीप साहब को बता दी। ओहो, गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिले मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह, क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी हो, वहाँ के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
0: अच्छा
1: यारा,
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा, जरूर करूँगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूँगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर साहब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता वो।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दी,
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें, एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ ओ ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा क्या ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेट है, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकी और डेट पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा, और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों बाहर आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बातें,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों, चाहे चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रामनाड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए।
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
0: अटक गया,
1: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज़्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म और एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
1: देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो के, जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए आप, बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों के।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवाओं की आवाज, नई सोच और नई ऊर्जा का अपना कार्यक्रम युवावाणी, और मैं हूं आपके साथ रानी राजश्री। और आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है आकाशवाणी के गौरवशाली आकाशवाणी@90 उत्सव को। श्रोताओं, 90 वर्षों की यह यात्रा केवल प्रसारण की यात्रा नहीं है, बल्कि देश की भावनाओं, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और जन जन की आवाज को जोड़ने का इतिहास है। आकाशवाणी ने समय के साथ न केवल सूचनाएं पहुंचाई, बल्कि समाज को जागरूक करने, प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी निरंतर किया है। रेडियो की मधुर आवाज से लेकर आज के आधुनिक प्रसारण तक आकाशवाणी ने हर पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी पहचान बनाए रखी है। गांव की चौपाल हो, किसानों की बातें हो, संगीत की महफिल हो या युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला मंच, आकाशवाणी हमेशा लोगों के दिलों के करीब रहा है। इसी विशेष अवसर पर आकाशवाणी की टीम पहुंची मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल ओबरा, जहां विद्यार्थियों के बीच एक रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता कराना नहीं था, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा, आत्मविश्वास और ज्ञान को सामने लाना भी था। विद्यालय परिसर में सुबह से ही उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा था। बच्चों के चेहरों पर आत्मविश्वास था और मन में कुछ नया सीखने की उत्सुकता। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीएस से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका जवाब बच्चों ने पूरे उत्साह और समझदारी के साथ दिया। प्रश्न मंच की शुरुआत जैसे ही हुई, पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। कहीं इतिहास से जुड़े प्रश्न थे, कहीं विज्ञान और खेल जगत से जुड़े प्रश्न, तो कहीं भारत की संस्कृति, संविधान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल। बच्चों ने जिस तेजी और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए, वह वास्तव में प्रशंसनीय था। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चों की सोच और तर्क क्षमता को परखा। श्रोताओं, जब बच्चे मंच पर आते हैं, प्रश्नों का सामना करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हैं, तब उनके व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। आज के समय में युवाओं को केवल किताबों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें मंच चाहिए, संवाद चाहिए और प्रतिभा दिखाने का अवसर चाहिए, और यही कार्य वर्षों से आकाशवाणी निरंतर करता आ रहा है। आकाशवाणी@90 के इस विशेष वर्ष में विद्यालयों और युवाओं के बीच इस प्रकार के आयोजन यह संदेश देते हैं कि ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक सोच ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल ओबरा में आयोजित यह प्रश्न मंच प्रतियोगिता बच्चों के उत्साह, उनकी प्रतिभा और सीखने की जिज्ञासा का सुंदर उदाहरण बनी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार और शिक्षकों का सहयोग भी सराहनीय रहा। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों के मन में आकाशवाणी के प्रति विशेष उत्सुकता दिखाई दी। कई विद्यार्थियों ने रेडियो और प्रसारण से जुड़ी बातें जानने में रुचि दिखाई और कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित नजर आए। श्रोताओं, जब नई पीढ़ी ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तभी समाज और देश मजबूत बनता है। आज इन बच्चों की चमकती आंखों में जो सपने दिखाई दिए, वही आने वाले भारत की उम्मीद है। और अब समय है उस विशेष रिकॉर्डिंग को सुनने का, जिसे आकाशवाणी की टीम ने मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल ओबरा में रिकॉर्ड किया। तो आइए सुनते हैं इस प्रश्न मंच के संपादित अंश को। स्थलीय ध्वनियांकन आशीष वर्मा और रानी राजश्री का, प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार वर्मा।
1: जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया कि आकाशवाणी 8 जून 2026 को 90 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर रही है, और इसी संदर्भ में आप लोगों को आकाशवाणी यानी रेडियो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, आप आकाशवाणी से जुड़े क्योंकि आप युवा हैं। आकाशवाणी का क्या महत्व है समाज में, इसकी क्या महत्ता है, किस तरीके से काम करती है, बस इसी उद्देश्य के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं और कुछ जनरल से क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको देना होगा। चारों टीमें तैयार हैं, चलिए तो फिर सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप टीम ए में?
2: श्रेया जायसवाल। विद्या प्रजापति।
1: बहुत बढ़िया। टीम बी में?
3: आयुष पाठक।
4: अभय गुप्ता।
1: वेरी गुड। अब टीम सी में कौन कौन है बताएं?
3: अर्पित केसरी।
4: अनुराग राज।
1: और टीम डी में?
5: स्पर्श प्रभात सिंह।
6: शिवम।
1: वेरी गुड। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए थोड़ी सी। और अब हम प्रश्नों का सिलसिला आपके साथ शुरू करते हैं। प्रश्न आपसे पूछने जा रही हैं रानी राजश्री। पहले प्रश्न के लिए तैयार हैं? जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न को सुनिए और सुनते ही हैंड राइज करिए। जो पहले हैंड राइज करेगा उसको उत्तर देने का मौका मिलेगा।
0: जैसा कि आप सभी युवा हैं तो और समाज में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है नशा, तो उससे जुड़ा पहला प्रश्न हमारा ये है कि धूम्रपान से जो बीमारी होती है वो किस अंग को इफेक्ट करती है?
1: टीम बी ने हैंड राइज किया है।
7: धूम्रपान से सबसे ज्यादा अगर किसी अंग को नुकसान पहुंचता है तो वह है फेफड़ा।
1: ठीक, बिल्कुल सही।

0: तो आपसे एक और अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोनभद्र की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं। टीम बी ने हैंड राइज किया है, क्या बात है।
1: सोनभद्र जिले की सीमाएं कुल चार राज्यों को छूती हैं। उन चार राज्यों के नाम हैं छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं मध्य प्रदेश।
0: बहुत अच्छा, और अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है,
2: जल का रासायनिक सूत्र क्या है।
0: टीम बी बताइए इस प्रश्न का उत्तर।
1: जल का रासायनिक सूत्र H2O माना जाता है।
0: बिल्कुल, वैसे मुझे लगता है इन प्रश्नों का जवाब सभी लोग जानते होंगे, हाथ इन्होंने पहले उठा दिया तो उत्तर इनका हो गया।
2: और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है।
0: क्या बात है, टीम बी लगातार बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है कि मुझे यहीं खड़े ही हो जाना चाहिए। बताइए,
1: रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक रक्त कणिकाओं के वजह से होता है,
0: लाल होता है। बहुत अच्छी बात। और अगला प्रश्न जो है हमारा खेती बाड़ी से है, तो आप बताइए कि जैविक खेती क्या है। मैंने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे टीम बी के पास ही खड़े हो जाना चाहिए, टीम बी से ही इस प्रश्न का उत्तर मिलने जा रहा है। बताइए,
1: सामान्य रूप से जैविक खेती से हमारा यह अभिप्राय होता है कि जिस प्रकार की खेती में सभी जैविक यानी के जो हमारे पर्यावरण में घुल मिल सके उन तत्वों के द्वारा की गई पर्यावरण सुरक्षित खेती ही जैविक खेती कहलाती है।
0: इसमें क्या उपयोग होता है।
1: इसमें उपयोग होते हैं हमारे घरों से निकलने वाले कुछ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जिन्हें हम हिंदी में साफ तौर पर यह बता सकते हैं कि जो कचरे या फिर जो भी वस्तुएं हमारे पर्यावरण में पूरी तरह से घुल मिल कर नष्ट हो जाती हैं और हमारे पर्यावरण को और अच्छा बनाती हैं, उसे ही जैविक खेती में प्रस्तुत किया जाता है।
0: चलिए, बहुत विस्तार से आपने जवाब दिया और बहुत संतुलित, बहुत अच्छी बात। और बाकी टीम आप लोग भी जागी है, अभी तो आप लोगों ने खाता भी नहीं खोला और टीम भी लगातार वार पे वार कर रही है, तो प्रश्नों का ये सिलसिला हम आपके साथ जारी किए हुए हैं। और इसी क्रम में अब अगला प्रश्न आपके सामने।
2: अगला प्रश्न है कि साइबर अपराध क्या है।
0: एक बार फिर से टीम बी, एक बार अपना नाम फिर से आप बता दीजिए।
1: आयुष पाठक।
0: टीम बी से आयुष पाठक जो है वो लगातार हाथ पे हाथ खड़े रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको शायद प्रश्न पहले से मालूम है, इन्होंने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है। ठीक है, बताइए अपने प्रश्न।
1: सर, साइबर क्राइम से मुख्य रूप से यह अभिप्राय है कि आजकल इंटरनेट की दुनिया में ही हम जी रहे हैं और इंटरनेट की दुनिया में ही हमारा हर काम हो रहा है और इसी से जुड़े हुए कड़ियों में साइबर क्राइम एक बहुत ज्यादा बड़ा अपराध बनते जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से यह शामिल है कि किसी भी तरीके से आपके इंटरनेट व जानकारी को किसी भी अन्य असुरक्षित माध्यम से चुराया जाए। साइबर क्राइम सिर्फ आपकी जानकारी चुराता नहीं, उसे पब्लिकली वायरल करना और सभी प्रकार के थेफ्ट्स को इसमें शामिल करना होता है। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी बात। टीम बी से आप भी है ना,
3: अभय गुप्ता।
0: अपने पार्टनर के साथ आपको कैसा फील हो रहा है इस समय।
3: बढ़िया सर, क्वेश्चन सुन रहा, बस शुरू हो जा रहा है।
0: इन प्रश्नों के जवाब आपको भी पता है।
3: नहीं पता था सर।
0: ये बढ़िया, क्या बात है, मतलब एक अच्छा पार्टनर मिल गया है। ये बढ़िया है। चलिए, और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब डिजिटल युग में हैं, तो डिजिटल युग में आकाशवाणी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
1: जैसा कि सर आपने बोला, डिजिटल युग में हम जी ही रहे हैं और आकाशवाणी को अब 90 साल पूरे हो चुके हैं और आकाशवाणी इतनी पुरानी है, इसलिए युवाओं में जनरली या फिर सामान्यता यह मान्यता हो गई है कि यह तो एक पुरानी चीज है, लेकिन आकाशवाणी अब भी हमारे देश की उसी तरीके से जान बनी हुई है। आजकल लोगों में यह धारणा हो चुकी है कि कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, Facebook, Instagram इत्यादि ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पे आकाशवाणी की ही तरह मनोरंजन, जानकारी, समाचार एवं अन्य चीजें प्रस्तुत हैं और पुरानी कंपनी हो जाने के कारण आकाशवाणी को उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है। यह एक सबसे बड़ी आकाशवाणी के लिए चैलेंज या फिर चुनौती माना जा सकता है।
0: बहुत बहुत एक्सलेंट। टीम बी से इस प्रश्न का भी उत्तर हमें मिला।
2: अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया।
0: टीम बी।
1: रेडियो के आविष्कारक का नाम जी मार्केनी माना जाता है।
0: सही है, सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से प्रश्न सुनिए। महिला सशक्तिकरण क्या है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम आ चुके हैं टीम डी के पास।

0: महिला सशक्तिकरण सरकार का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाया, जैसे पहले से रूढ़िवादी सोच है कि महिलाओं को दबा कर रखने का, उससे ख़त्म करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाना, जैसे कि उन्हें गेम्स में आगे बढ़ाना, बिजनेस में आगे बढ़ाना, जैसे कि आजकल की महिलाएं ओलंपिक में भी बहुत सारे मेडल्स ला रही हैं और ऐसे सरकारी कई सारी योजनाओं से वो आगे बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल, तालियां हो जाए भाई टीम डी के लिए।
2: अगला प्रश्न है जो अक्सर आपके सामने मतलब ये रूबरू होता हुआ एक मैटर है और वो है कि फास्ट टैग क्या है।
1: टीम डी ने हाथ पहले राइज किया, चलिए बताइए टीम डी।
0: जैसे कि हम लोग टोल प्लाजा जैसे पे करते हैं टोल टैक्स, उसी को डिजिटल करने के लिए सरकार का एक तरीका है जिससे हम लोग टोल को डिजिटली पे कर सकते हैं, जिससे कि काम इजी हो सके और ट्रैफिक जाम ना लगे।
1: बिल्कुल सही जवाब। और अब हम 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न आपके लिए ये है कि जैव विविधता क्या है। टीम बी एक बार फिर से उत्तर के साथ।
3: सर, जैव विविधता जिसे इंग्लिश में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, जैव विविधता से हमारा यह अभिप्राय होता है कि हमारे पर्यावरण में सिर्फ हम इंसान ही नहीं होते, हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी शामिल हैं जिन्हें अंग्रेजी के एक टर्म फ्लोरा और फाउना में भी डिफाइन किया जाता है। जैव विविधता से हमारा साधारण सा यह अभिप्राय है कि एक ऐसा पर्यावरण जिसमें कई प्रकार के जीवित जीव और जंतु पाए जाएं और वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर भी हों।
1: बहुत बढ़िया।
2: अब इस क्विज का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा।
1: टीम बी।
3: सर, रविंद्रनाथ टैगोर।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। सोनभद्र से जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। जनपद सोनभद्र में कुल कितनी तहसील है। टीम डी की ओर जा रहे हैं, बताइए प्रश्न का उत्तर।
0: चार तहसील है जनपद सोनभद्र में।
1: बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। टीम ए की ओर हम बढ़ते हैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, बताइए।
4: बनियान ट्री।
1: इसको हिंदी में क्या कहते हैं।
4: बरगद का पेड़।
1: यस, बहुत सही जवाब। टीम ए ने इस प्रश्न के उत्तर के साथ अपना खाता खोला है। और अब अगला प्रश्न आपके लिए ये है, आकाशवाणी की क्या भूमिका आप लोगों को समझ में आती है, इस बारे में बताइए। टीम बी एक बार फिर तैयार है अपने उत्तर के साथ, बताइए।
3: आकाशवाणी की मुख्यतः भूमिका हमारे बहुत पुराने समय 1936 से चली आ रही है, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट और फिर इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में भी ये आई, जिस जो आज भी हमारे भारत देश को सर्व कर रही है, सभी तरीके की जानकारी देने, समाचार देने, मनोरंजन, मौसम एवं हर विभाग की जानकारियों को देने के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। पर इसका हमारे भारत देश से पुराना भी एक नाता रहा है, जिसकी वजह से आज यह कंपनी हमारे भारत देश में 90 सालों तक टिकी रह गई।
1: बहुत ही सुंदर जवाब मिला इस प्रश्न का कि आकाशवाणी की क्या उपयोगिता और क्या आप इसके बारे में जानते हैं। और अब अगले प्रश्न की ओर।
2: अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है।
1: टीम डी के पास हम पहुंच रहे हैं, प्रश्न आपने सुन लिया है।
5: जी सर,
1: बताइए उत्तर।
5: भारत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है।
1: बिल्कुल सही जवाब, भारत रत्न। भारत रत्न विजेता किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं।
5: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बहुत सही। और अब आखिरी प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं, आकाशवाणी से ही जुड़ा हुआ आखिरी प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था। माइनस मार्किंग नहीं, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है बता सकते हैं। चलिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम चलते हैं टीम सी की ओर।
6: 1856।
1: गलत जवाब, 1927। तो चलिए फिर इसी के साथ प्रश्नों का वो पूछने का जो क्रम था वो अब यहीं समाप्त होता है। अब थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे और उसके बाद अगले अंक की ओर हम आपके साथ बढ़ते हैं।
7: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
8: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
9: हेलो,
7: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
8: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
7: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
8: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
7: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: अब इस प्रतियोगिता का दूसरा राउंड अब शुरू हो गया है और सभी टीम को पर्चियां दे दी गई हैं और उसमें एक एक विषय लिखा हुआ है जिस पर

0: आपको सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर बोलना है।
1: और जान लेते हैं किसको किस विषय पर बोलना है। टीम ए, आपको क्या टॉपिक मिला है?
2: राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका।
1: कैसा लग रहा है आपको ये टॉपिक? ठीक है,
2: ठीक है,
1: कोई कंफ्यूजन?
2: नहीं,
1: कंफर्टेबल, ठीक है। टीम बी, आपको क्या टॉपिक मिला है?
3: हमारा टॉपिक रेडियो का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो है।
1: बहुत अच्छा, इस पे तो मुझे लगता है तो आप बोल ही लेंगे।
3: जी सर,
1: बिल्कुल। टीम सी,
4: हमारा टॉपिक है करे योग रहे निरोग।
1: कैसा लग रहा है आपको ये टॉपिक?
5: ठीक ठाक है।
1: ठीक ठाक है, योग से नाता है कि नहीं आपका?
5: नहीं, कभी कभार करते हैं।
1: बिल्कुल। और टीम डी, आपको कौन सा टॉपिक मिला है?
6: हमें मिला है साइबर क्राइम।
1: कितना कंफर्टेबल इस टॉपिक के साथ?
6: अच्छा, ठीक
1: ठीक है। टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी, चारों टीमें अपने अपने टॉपिक के साथ तैयार हैं। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं टीम ए को कि टीम ए में से कोई एक सदस्य आए और जो विषय उनको दिया गया है उस पर 2 मिनट वो लगातार बोले, स्टंप पर बोले। तो टीम ए से जो भी आ रहे हैं आइए।
7: मैं टीम ए से विद्या प्रजापति, मॉडर्न कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 12 से हूँ। मेरा टॉपिक है रोल्स ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। तो जैसे कि हम युवा हैं तो हमें हमारे तरीके सोचना है कि हमारा देश हमारे पर निर्भर है, कि हमारी स्टडीज कैसी है। जैसे कि मैं खुद महिला हूँ तो हमारे महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि कल्पना चावला, जिन्होंने जिनका सपना था पहले से कि वो स्पेस में जाए और उन्होंने वो किया। और उसके बाद अच्छी टेक्नोलॉजी, हमारा देश अच्छी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा देश डिजिटल हो रहा है तो हमें डिजिटल तरीके से सोचना चाहिए कि क्या कैसे होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें हमारे राष्ट्र को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ही हमें टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो हमें हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा सोचना चाहिए। और हमारा जो मंगलयान था उसमें भी हमें काफ़ी यूथ और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे हमने पूरा किया है।
8: बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा टीम ए के साथ। और अब हमारे सामने आ रहे हैं टीम बी से।
3: मैं टीम बी से आयुष पाठक, कक्षा 12 का छात्र हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा आज का विषय है रेडियो का महत्व। रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, यह एक जानकारी का माध्यम है। इसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और पुराने समय से हमारे जीवन में इसका महत्व रहा भी है और चलता भी आ रहा है। आज के समय में युवा पीढ़ी रेडियो को सुनना और समझना बहुत कम कर चुकी है, लेकिन हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे भारत देश में रेडियो का कितना महत्व रहा है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 1936 से ही रेडियो की स्थापना हो चुकी थी, तो हर अच्छी बुरी बातें हम उस समय भी हमें रेडियो के माध्यम से ही जानने को मिली थी। माना आज के समय पे हर इंटरनेट और हर माध्यम में हमारा सशक्तिकरण हो चुका है, हम विकसित हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने मूल जड़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे रेडियो का देश से उतना ही जुड़ाव रहा है जैसे कि कमल का पंखुड़ियों से रहा है। बाकी युवाओं का सम्मेलन इसमें भले कम देखा जा रहा है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए, हमारा देश एक वयस्क देश कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 73 से 75% युवा पीढ़ी की जनसंख्या है, जो कि एक किसी भी विकसित देश को निर्भर बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। रेडियो का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि मनोरंजन, समाचार, जानकारियाँ एवं हर ग्रसित जानकारियों के बारे में भी। धन्यवाद।
1: बिल्कुल, टीम बी से आप थे आयुष पाठक और लगातार इन्होंने 2 मिनट का जो समय इनको मिला था उसका बहुत ही सही उपयोग किया और लग रहा था कि शायद ये मिनट भी इनके लिए कम है और इन्हें ज्यादा बोलने का मौका मिलता और सुनने में भी अच्छा लग रहा था। इन्होंने बहुत विस्तार से आकाशवाणी रेडियो के महत्व के बारे में बताया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक अगली टीम के साथ।
4: टीम सी से, और मैं अच्छा 12वीं मॉडर्न कॉलेज सीनियर सेकेंडरी ओबरा स्कूल का छात्र हूँ। मेरा आज विषय है करे योग रहे निरोग। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि योगा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अपने आपको रिलैक्स फील करते हैं, योगा करना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस है, रिलैक्सेशन, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, योगा से हम उसको दूर कर सकते हैं। योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये हमें बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने के भी काम आती है। जैसे कि आजकल हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल दवाइयां हजारों की लेने के लिए, लेकिन दवाई योगा अगर करेंगे तो दवाइयां किसी काम की नहीं है। योगा से भी हम लोग बहुत चीज़ अपना ठीक कर सकते हैं। या हम लोग के पास सिर्फ एक प्रकार का योगा नहीं होता, योगा के बहुत सारे प्रकार होते हैं और हर एक बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग अलग प्रकार के योगा होते हैं, इसीलिए हमें भी योगा के लिए ध्यान देना चाहिए।
8: अभी टीम सी से अभी इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, करें योग रहने लो, बहुत बढ़िया प्रयास रहा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं टीम बी से।
9: तो सबसे पहले मैं सभी जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम स्पर्श प्रभात सिंह है और मैं ओबरा के एक प्रतिष्ठित स्कूल मॉडर्न कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आता हूँ। मैं कक्षा 12वीं का एक छात्र हूँ तथा ऑल इंडिया रेडियो के इस प्रतियोगिता में मुझे साइबर क्राइम पे बोलने के लिए कहा गया है। तो साइबर क्राइम एक बढ़ती समस्या है जो कि इंटरनेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चे में है। इंटरनेट के बढ़ने की वजह से साइबर क्राइम आज एक उभरती हुई समस्या लोगों के सामने आई है। साइबर क्राइम की वजह से हम लोग के देश में बहुत से क्राइम रेट अथवा सुसाइडल रेट भी बढ़ चुके हैं। और साइबर क्राइम एक मुख्य वजह है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम या और भी अन्य कई सोशल मीडिया हुए जिसका उपयोग आज के युवा बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। साइबर क्राइम इसीलिए आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो आज के युवा है वो सोशल मीडिया पे बिना सोचे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप सोशल मीडिया और जो पोस्ट करते हैं उससे आप ध्यान दें कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत से कदम उठाए हैं। जैसे वो सारे जनता को सूचित कर रही है प्रचार प्रसार करके कि कोई भी फोन कॉल कोई ऐसे लूटने के लिए अपराधी करे तो उसको ना उठाए, जागरूक रहे, सतर्क रहे। तो यही मेरा सबसे कहना है कि आज हम लोग ये ठानते हैं कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारे आसपास जो लोग भी हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि साइबर क्राइम क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। धन्यवाद।
1: और टीम डी से ये थे स्पर्श, साइबर क्राइम पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी यही समाप्त होता है और थोड़ी देर में हम विजेता टीम का जो नाम है वो घोषित करेंगे। थोड़ा वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। हमारे पास विनर टीम का नाम आ चुका है और जैसा कि आप सभी को पता है कि टीम बी ने बहुत से सही प्रश्नों का जवाब दिया था, तो आज की हमारी जो विजेता टीम है वो टीम बी है जिसमें शामिल थे आयुष पाठक और अभय गुप्ता। आपके लिए बहुत तो हमारा प्रश्न मंच आकाशवाणी 890 के संदर्भ में आप सबने इसमें प्रतिभाग लिया और अपने बात अपने विचार इसमें व्यक्त किए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
10: विद्यार्थियों ने पूरे मनोबल और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कई बच्चों ने कठिन प्रश्नों के उत्तर देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। श्रोताओं, ऐसे कार्यक्रम केवल प्रतियोगिता नहीं होते बल्कि बच्चों के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का माध्यम बनते हैं। इसी भावना के साथ मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल ओबरा की प्रधानाध्यापिका सोनाली सिंह जी अपने विचार व्यक्त करते हुए।
11: नमस्कार, मेरा नाम सोनाली सिंह है, मैं मॉडर्न कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओबरा के प्रिंसिपल हूँ। हम सभी के बीच आज आकाशवाणी की टीम उपस्थित है और आकाशवाणी एट 90 के इस विशेष अवसर पर हमारे विद्यालय में युवाओं के लिए जो नॉलेजेबल और मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया है वह निश्चित रूप से स्टूडेंट्स के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनेगा। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपने गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे विद्यालय को इस आयोजन के लिए चुना। यदि युवाओं को सही दिशा, सही मंच और सही प्रेरणा मिल जाए तो वे समाज और देश दोनों का भविष्य बदल सकते हैं। इसी सोच के साथ वर्षों से आकाशवाणी ने कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का मंच दिया है। आज हमारे स्कूल में आयोजित प्रश्न मंच प्रतियोगिता भी उसी सोच का सुंदर उदाहरण है। साथ ही मैं आकाशवाणी की पूरी टीम का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे स्कूल में आकर बच्चों के साथ इतना आत्मीय संवाद स्थापित किया। आपके इस प्रयास से स्टूडेंट्स को न केवल सीखने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि उनकी आवाज और उनके स्किल्स और टैलेंट का भी महत्व है। आई रियली थैंक द एंटायर टीम ऑफ आकाशवाणी। जय हिंद।
12: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
10: तो दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में आज का सफर यहीं तक। अब अपनी रेडियो साथी रानी राष्ट्री को कार्यक्रम से अनुमति दीजिए।

0: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है रानी राजश्री की और प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: हेलो,
0: दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
1: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सफर में आपके साथ हूं रानी राजश्री। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला। नमस्ते सर, कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अपना परिचय दें।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सतारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: जी सर, तो सर क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताएं।
1: मेरा वर्कशॉप है, वेल्डिंग काम करते हैं
0: जी।
1: दरवाजे, ग्रिल, सीढ़ियां बनाते हैं।
0: अच्छा सर, कितने सालों से आप लगे हुए इस काम में?
1: करीबन 30 साल हो गए।
0: अच्छा सर, और इसके साथ साथ रेडियो सुनते हैं?
1: सुनते हैं सर, काम करते करते रेडियो मोबाइल ऐप पर सुनते हैं।
0: कौन से कार्यक्रम आपको सुनना बहुत पसंद है?
1: फोन करना का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी बिल्कुल, और आपने कॉल किया इससे पता चल रहा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: जी जी।
0: और सर मुझे लगता है कि आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: हाँ जी।
0: और साथ में क्या करते हैं, क्या शौक है आपके?
1: सुनना भाई, रेडियो सुनने का, रेडियो बहुत बड़ा हमारे मेरे दिल का ताज है।
0: बिल्कुल,
1: 1970 से रेडियो सुनता हूँ।
0: 1970 से आप रेडियो सुन रहे हो?
1: जी।
0: अरे वाह सर, बहुत लंबा सफर है।
1: उस वक्त क्या था, रेडियो को लाइसेंस था
0: जी,
1: और एक वक्त क्या चेंज हो गया, हमारे पिताजी ने लाइसेंस नहीं मिली थी
0: जी,
1: इसलिए पोस्ट ऑफिसर ने हमारा रेडियो जब्त कर ले गया। बहुत याद है।
0: तो सर आज इस कार्यक्रम में आपने कॉल किया है, गाना कौन सा आप सुनेंगे?
1: फिल्म में बैराग।
0: कौन सा गीत?
1: सारे शहर में आपसा कोई नहीं कोई नहीं।
0: बहुत खूबसूरत गीत है सर, और क्या आप गुनगुनाना चाहेंगे?
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ
0: जी,
1: हमारे मित्र गौतम राय जी, लोकेंद्र वर्मा जी, गंगाधर सरोवर जी, सुनील दास जी, दिलीप कोहलिया जी,
0: जी
1: जी, नितिन पवार जी, किरण सिंह जी, गौतम पोखाडी जी, सचिन जी,
0: नांडारे
1: जी,
0: और ये खूबसूरत
1: हम सभी सुनना चाहते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, और आपकी पसंद पर आपके सभी सगे संबंधियों, आपके मित्रों के लिए ये गीत।

0: जी कार्यक्रम हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: जी सर कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दें।
1: मैं जिलोंग शहर उदयपुर राजस्थान से।
0: जी सर
1: उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी, तो सर राजस्थान का इस वक्त मौसम कैसा है?
1: मौसम 44 डिग्री तापमान है
0: जी,
1: और हमारे उदयपुर शहर में 40 डिग्री है।
0: तो सर इतने तापमान में क्या क्या कठिनाई आती है रोजमर्रा के जीवन में?
1: रोजमर्रा के जीवन में बहुत कठिनाई आती है, धूप में निकल नहीं सकते हैं
0: जी।
1: 11 बजे से 5 बजे के बीच में हम दुकान में और घर में ही रहते हैं।
0: अगर सेहत को सुरक्षित रखना है तो यही नियम सही रहता है
1: जी। और अगर बाहर निकलना है तो सूती कपड़े पहन के निकले, सिर को ढक कर निकले
0: जी जी,
1: और साथ में पानी की बोतल लेकर जाए
0: जी सर। और सर क्लाइमेट में इतना ज्यादा चेंज हो रहा है कि अगर देखा जाए तो हर जगह की यही स्थिति बनी हुई है कि तापमान बहुत ज्यादा।
1: मैडम अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हुई थी
0: जी,
1: तो क्लाइमेट बहुत बदल रहा है।
0: तो सर ये असमय जो बारिश होती है इसमें सामना करना पड़ता है किन परिस्थितियों का?
1: अचानक बारिश होती है तो तैयारी नहीं होती है, तो खेतों में जो अनाज होता है वो खराब हो जाता है, घरों की छत पर जो सामान रखते हैं वो खराब हो जाता है और बीमारी होने का खतरा रहता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि एक तो तैयारी नहीं होती है तो किसानों को दिक्कत, और दूसरी बात कि तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं
1: जी। खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, ज्यादा तेल की बनी हुई चीजें नहीं खाते हैं
0: जी, बिल्कुल
1: मिर्च मसाला नहीं खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, दही लस्सी छाछ का उपयोग करते हैं और नींबू पानी का उपयोग करते हैं, और शाम को बिल्कुल हल्का भोजन करते हैं।
0: अगर सेहत को सही रखना है तो शाम का हल्का भोजन ही बेहतर होता है। तो सर आज इस कार्यक्रम में हमारी आपकी बातचीत हो रही है, गीत कौन सा आप सुनेंगे?
1: जी गीत गाता चल फिल्म का नाम याद आ रहा है, उसमें प्यारा सा गीत है, धरती मेरी माता पिता आसमान मुझको तो अपना सा लागे सारा संसार।
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया गीत है सर। तो सर आपकी पसंद पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: हाँ नमस्कार
0: जी, नमस्कार सर। कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: आपका शुभ दिन तक।
0: बिल्कुल
1: बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ बहन।
0: क्या बात है सर, महाराष्ट्र में। और सर बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो अभी रिटायर्ड हूँ, मेरी उम्र 84 रनिंग नाउ, 84 साल चालू है बहन।
0: ओह सर क्या बात है। और जीवन के इस पड़ाव पर है सर, कैसा लगता है अभी? आपके अनुभव क्या हैं जीवन के प्रति?
1: ये रेडियो बोले तो हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है।
0: क्या बात है।
1: और रेडियो से हमें विज्ञान, साहित्य, कला और जो भी दुनिया भर के खबरें, हमें इससे हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती
0: है। जी बिल्कुल सर, हर पल की जानकारी रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती है।
1: जी जी। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जो अपना काम करते वक्त भी आपके काम में किसी प्रकार की रुकावट न डालते हुए सुनते सुनते आपके काम में आपको जोश आके एक ऊर्जा प्राप्त होती है बहन जी।
0: क्या बात बोली सर आपने। और दूसरी बात ये कि हम जब सुनकर अपने काम में लगे रहते हैं तो किसी प्रकार की डिस्टरबेंस भी नहीं होती।
1: सही बात।
0: सर आप रेडियो कितने सालों से सुन रहे हैं, कितने वर्षों
1: का
0: साथ
1: तो
0: है?
1: वही बात देखिए तो मैं 1952 से रेडियो से जुड़ा।
0: क्या बात है।
1: 1957 तक अपने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर फिल्मी गीतों के ऊपर ब्रांड था
0: जी।
1: और तब से विविध भारती पर हिंदी गानों का प्रसारण चालू हुआ और फिर आकाशवाणी केंद्र से हम जुड़ पाए हैं बहन जी।
0: क्या बात है सर, बहुत लंबा सफर आप तय कर चुके हैं।
1: जी जी।
0: और आगे भी ये सफर यूं ही जारी रहेगा। आज इस कार्यक्रम में हमारी आपकी बातचीत हो रही है, कौन सा गीत आप सुनेंगे?
1: मैं चली।
0: सर आपकी आवाज बड़ी मीठी सी है, तो क्या आप गुनगुनाएंगे इस गीत को?
1: मैं चली पीछे पीछे जहां प्यार की दास्तां।
0: आपकी पसंद पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश जी, नमस्ते
1: जी नमस्ते सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
0: जी। थैंक यू सो मच। मैं
1: सर
0: ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: जी सर
0: जी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
1: और इसके साथ साथ क्या क्या आपके शौक हैं?
0: जी, इसके साथ मैं बताऊँ, आकाशवाणी सुनता रहता हूँ, फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता हूँ।
1: क्या बात।
0: और
1: है?
0: मैं एक भजन गायक भी हूँ, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है 8 लोगों का।
1: जी
0: जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले भजन को, और 2 हारमोनियम बजाते हैं और 2 तबला और ढोलक बजाते हैं।
1: तो सर, ये भक्ति का ये जो सफर आपने चुना, ये कितने सालों से चल रहा है?
0: जी, इस सफर में मुझे चलते हुए 8 साल हो चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: आपको बताऊं जी, जब कोरोना टाइम आया था ना,
1: जी,
0: उस समय पर कहीं पर भी आना जाना मतलब बंद कर दिया गया था।
1: जी जी
0: और ऐसे मतलब लॉकडाउन की वजह से मतलब 1 महीने से 1.5 महीने तक मैं घर पे ही रहा।
1: जी
0: उस समय पर मैंने भजन के मतलब इस क्षेत्र में गया, अपने पास के लोगों से बाहर जाके भजन गाना सीखा, और फिर हमारा एक ग्रुप बना लिया हम लोगों ने।
1: जी,
0: तो उसमें हमारे 8 लोगों का ग्रुप तो मतलब कंपल्सरी है, उसमें मतलब हमारे 8 दिन भजन होते ही रहते हैं।
1: सर, कोविड का जो आप टाइम बता रहे हैं, वो वाकई बहुत ज्यादा डराने वाला था, और ऐसे में आपने भक्ति का ये जो साथ चुना, बहुत बेहतर काम।
0: जी बिल्कुल। उस समय है ना, क्या हुआ दीदी,
1: जी
0: कहीं पर भी तो आना जाना हो ही नहीं रहा था, बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे घर से लोगों को, तो उसमें काम और आकाशवाणी के कार्यक्रम भी उसमें बंद कर दिए गए थे।
1: जी
0: जी, तो उस समय पर हमारे पास खाली समय बहुत था, तो हमने फिर समय का सदुपयोग किया और मतलब ऐसे ग्रुप बना के मतलब उसमें आगे बढ़े हम फिर।
1: जी बिल्कुल।
0: और आज इतना मतलब हो गया है ना, हमारा भक्ति सागर के नाम से हमने एक चैनल भी बना लिया है, और उसपे हमारे सभी भजन आपको मिल सकते हैं।
1: क्या बात है सर। सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, कि आपने अपने समय का सदुपयोग कितने अच्छे तरीके से इसको संजोया, इसको किया। सर, एक लाइन अगर गुनगुना देते, आप तो भजन भी गाते हैं।
0: जी बिल्कुल दीदी, मैं बताऊँ, मैं भजन तो गाता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर निर्गुणी भजन और हनुमान जी के भजन, माता जी के भजन गाता हूँ।
1: जी
0: आपने कहा है, तो मैं एक भजन की लाइन आपको
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: जय।

0: बहुत ही बढ़िया गाते हैं सर आप
1: जी, बिल्कुल माता जी की स्तुति है ये।
0: आप भक्ति के राह पे यूं ही बढ़ते रहिए और सभी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, यही हम कामना करते हैं। चलिए आपकी पसंद पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।
1: थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे
1: जी? बताना चाहूंगा दीदी, मैं फिल्म का नाम है कोयला और गाने के बोले, देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालो तुझे तो मरना जाऊं कहीं।

0: हेलो
1: हेलो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी नमस्ते सर,
0: चंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश।
1: सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताएं।
0: जी धन्यवाद मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ
1: जी,
0: लगभग मुझे 6 साल का एक समय निकल चुका है, मैं रिटायर हुए।
1: जी जी,
0: पहले मैं कोल इंडिया में सर्विस करता था और 37 से 38 साल में उसमें सेवा दिया हूँ।
1: क्या बात है सर। तो सर काम का जो आपका दौर था वो वक्त और आफ्टर रिटायरमेंट, ये दोनों दौर में क्या आप अंतर महसूस करते हैं?
0: मैडम वो समय हमें खलता है अभी
1: जी,
0: मतलब कमी इसलिए महसूस होती है कि उस समय हमारा एक बिजी लाइफ था।
1: जी बिल्कुल,
0: कि भाई सुबह से जो एक रोटेशन बना हुआ था कि सुबह हमें उठ करके ये काम करना है, उसके बाद हमें अपने कार्यस्थल पे जाना है
1: जी,
0: वहाँ से आने के बाद फिर परिवार में समय देना है, तो ये जो सारी जो दिनचर्या थी वो एकदम से स्थगित हो गई है। और अभी मैडम हमने अपनी दिनचर्या अब दूसरे तरीके से बनाए हुए है, सुबह मॉर्निंग वॉक को जाना है, फिर वहाँ से आके छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है
1: तो
0: पेड़ पौधों की देखभाल करता हूँ, उसके बाद फिर अपने जो सुबह का स्नान वगैरह पूजा पाठ रहती है वो रहता है
1: जी,
0: और परिवार में आप समय देते हैं।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि काम के दौर में समय ही तो है जो हम परिवार को नहीं दे पाते हैं।
0: जी जी, क्या होता था मैडम, हम जब अपने कार्य पे थे
1: जी
0: तो परिवार में कभी कई फरमाइशें रहती थी कि भाई फिल्में देखने जाना है या कहीं मंदिर जाना है या कहीं घूमने जाना है, वो समय हम एकदम से नहीं दे पाते।
1: जी बिल्कुल,
0: और खासतौर पर जिस दिन लोग बोलते थे
1: सर, ये होता है
0: जिस दिन वो बोलते थे उसी दिन कोई ना कोई काम भूल जाता।
1: बिल्कुल,
0: क्या होता था हम वो समय नहीं पाते, अब वो समय हम जो है निकाल करके अब बच्चों को देते हैं।
1: नहीं सर बिल्कुल, आपने ये जो बात कही कि आपने इस वक्त को नए रूटीन के साथ मर्ज कर दिया है, जैसे कि सैर करना सुबह की और गार्डन आपने बनाया हुआ है, वाकई हमारे आकाशवाणी के माध्यम से श्रोता सुनेंगे और इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे।
0: जी जी मैडम, अभी क्या होता है जैसे श्रीमती जी कभी थकार करके कभी बैठ जाती है
1: जी,
0: उसी समय एक छोटी सी बढ़िया अदरक वाली चाय पिला दो,
1: क्या बात है,
0: तो उस समय उनके चेहरे पे जो खुशी मिलती वो हम कहीं पैसे से खरीद नहीं पाते।
1: सर ये आपकी बातों से वो खुशी सोच सकती हूँ कि क्या खुशी होती होगी वो।
0: मैडम जैसे लोगों को देखता हूँ, कुछ बुजुर्गों की जो स्थिति रहती
1: जी,
0: है बच्चे उन पे जो कहना चाहिए ध्यान नहीं देते, तो आज तक या अभी तक मेरे को ईश्वर की कृपा कहिए या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कहिए
1: जी,
0: तो वो स्थिति अभी हमारे घर में नहीं बन पाती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और सबका आशीर्वाद यूं ही आगे भी बना रहेगा सर। तो सर गीत कौन सा आज आप सुनेंगे?
0: मुझे सुनवा दीजिए 1961 की फिल्म थी माया, मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी, कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला।
1: तो सर गाएंगे क्या दो लाइन?
0: मैडम अब आप तो शर्मिंदा मत कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर बिल्कुल, आप गा सकते हैं बिल्कुल।
0: नहीं नहीं बस आप जो है मुझे बस हमारे सभी श्रोता मित्रों के साथ से
1: जी बिल्कुल सर, आपकी पसंद पर ये प्यार सा गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री, और कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए।
1: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: अभी आप सुन रहे थे अपना फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी रानी राजश्री की, और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले कुछ एक क्षण में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खबरों से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का आज विस्तार भेल। मुख्यमंत्री के मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जनभवन के गांधी सभागार में नया मंत्रियन के शपथ दियावलिनी। मंत्रिमंडल के नया सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी आ मनोज कुमार पांडे कैबिनेट मंत्री और कृष्णा पासवान सुरेंद्र दिलेर हंसराज विश्वकर्मा आ कैलाश सिंह राजपूत राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली ले। योगी सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल आ सोमेंद्र तोमर यह मौका पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली ले। नया मंत्री लोगी राज्यपाल आ मुख्यमंत्री के पुष्पगुच्छ देकर उनकर अभिनंदन कई ले। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, भाजपा का महामंत्री संगठन धर्मपाल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री कहले हवे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगुवाई वाली सरकार बिजली व्यवस्था में बढ़न सुधार कैल गेल हो। तकनीकी सुधारण की जरिया से मानवीय हस्तक्षेप कम कैल गेल हो, जबने से भ्रष्टाचार पर रोक लगावल जा रह सके। आ जनता के राहते मिले वहां के कहले की प्रदेश के बढ़िया बिजली ढांचा देवी बदे लगातार कोशिश जारी बा। ऊर्जा विभाग का उपलब्धि गिनावत श्री शर्मा कहले की प्रदेश में अब जिला मुख्यालयन के 24 घंटा, तहसीली मुख्यालयन के 22 घंटा अ ग्रामीण इलाकन के 20 घंटा बिजली आपूर्ति दिहल जा रहे हो। वहां के बतवली की सरकार 165 लाख नया बिजली कनेक्शन देले हवे, 59 लाख से बेसी स्मार्ट मीटर लगावल गयल हो और 26,000 किलोमीटर से बेसी पारेषण लाइने का विस्तार कैल गल हवे। एकरे अलावा ग्रामीण इलाकन में ढेरी संख्या में निजी नलकूपन के बिजली कनेक्शन उपलब्ध करावल गयल बा। अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र बतवले हवे की मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुकेल बा। परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ी रहल हो। श्री मिश्र आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति का बैठक में शामिल भेले के बाद संवाददाता लोगों से बतियापत रहले। वहां के बतवले के मंदिर परिसर में राम मंदिर आंदोलन में अपन प्राण न्यौछावर करे वाले कार सेवकन के याद में एक भव्य शहीद स्तंभ बनावल जा रहे हो, जेके 15 जून ले पूरा हो गए लेके उम्मीद बा।
1: निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया, शहीद स्तंभ, पूर्ण स्तंभ जो है उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। की बाउंड्री वॉल जो बननी है 4 किलोमीटर, उसमें लगभग साल लगेगा। प्रयास है कि हम 2026 में उसे भी पूरा कर।
0: श्री मिश्र बतावले की परिसर में नया जमाना का म्यूजियम का निर्माण चली रहल हो। म्यूजियम में 20 गैलरी बनावल जाए, जिसमे 70 तकनीक आधारित गैलरी श्रद्धालुओं के मंदिर भ्रमण जैसन अभुनव अनुभव कराए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज वाराणसी के बलदेव इंटर कॉलेज में संपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज के साथ 183 जोड़न का विवाह करावल गये। यह मौका पर नया विवाहित जोड़न के 60,000 रूपए के चेक परिधान उपहार का समान अभिहा प्रमाण पत्र दिहल गये। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह से सतही सज्जू जनप्रतिनिधि लोगिन विवाहित जोड़न पर फूल बरसाकर उनके सम्मुख उज्जवल भविष्य का कामना कई ले। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के ओडिसी प्रवक्ता संवर्ग का 2 दिवसीय परीक्षा आज प्रदेश भर में संपन्न हो गई। आज पहला पाले में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत आ मनोविज्ञान के साथ ही 5 विषयन आ दूसर की पाले में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी आ कला के साथ ही 4 विषय का परीक्षा आयोजित भेल। सज्जो जिलन में परीक्षा के लेके जिला प्रशासन सतर्क रहल, कहीं से कोनो तरह की शिकायतें नहीं मिलल। हापुड़ जिला के काली देर राती गंगा एक्सप्रेसवे पर भेल सड़क की दुर्घटना में एगो बच्चा और 2 महिला लोगों के साथ ही 3 जने का मौती हो गये। पुलिस सूत्र बतावले की बरेली से लुधियाना जा रहे एगो कैंटर डिवाइडर से लड़े के पलट गये, जिसमें 3 लोग दबी गये और ओहिजुक में मौती हो गई। ये दुर्घटना में दुई जने औरियो घाई हो गए जिन्हें इलाज बदे अस्पताले भेजी दिहल गए। प्रदेश का करीब सचो जिलन में पछला दो दिन के दौरान मौसम साफ रहले अतेज घाम निकलने के नाते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज कैल गए हो। मौसम के ये बदलाव के नाते लखनऊ के साथ ही कई जिलन में उमस भरी गर्मी पड़े लागल बा। मौसम विभाग बहने से ही एक बेरी फिर मौसम में बढ़न बदलाव का पूर्वानुमान चतवले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नखड़ू भैया तो हूँ कि राम राम हो, कह सुनाओ का हाल चाल है।
2: राम राम ने भैया देखा हाल चाल जौन कहते हैं भैया, इस समय शादी ब्याह के जौन लगन पताई के दिन चलत बा भैया, गर्मी भी बा, लेकिन फिर भी देखा जैसे गांव के रिवाज रहा ना कि भैया अभी भी सिद्धे के लकड़ी बदे ले जाए के मड़वा छवावल जाला और जौन भैया बांसे के सुग्गा बनावल जाला हो, कतवारू भैया रास्ते में भेटाएगे ना, वो समझ ला के सुंदर सुंदर समझ लो सुग्गा बनौले रहना ना और लाल रंग लगौले रहना, देख के ऐसा लगल कि भैया वो फिर से वो दिन वापस आ गया कि मतलब शादी ब्याह के जौन पहले गांव में चलत रहल प्रचलन आज भी देखा कहीं ना कहीं वो जिंदा बा और जौन पंच भाई लोग बाया उनके बड़ी रुचि से बहुत आनंद पूर्वक उनके देखा सुग्गा बनावाना।

0: के निहित कह कर रखे के है, काहे से कि भैया हो अगर हम लोगन अपन जौन प्राचीन परंपरा बा ओके निभाव अगर तो कहीं न कहीं हम लोगन ठीक ठाक रहब।
1: बिल्कुल। और देखा भैया, आज के समय में हर कोई, जैसे आप कहते हैं आधुनिक दौर चलत बा, हर कोई व्यस्त बा, और ये व्यस्तता भरे जीवन में हर कोई खुशहाल जीवन जिए बदे संघर्ष करत बा। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के बात ले लेवल जाए, चाहे मन शांत रखे के बात ले लेवल जाए भैया, एकर उपाय एक बा भैया कि योग जौन हो, योग अपनावल जाए और अपने आप के प्रसन्न रखल जाए, स्वस्थ रखल जाए। तो भैया देखल जाए तो अगर योग जौन हो केवल एक व्यायाम ही ना हो, बल्कि स्वस्थ जीवन जिए का एक कला हो। आज के थकान भाग दौड़ भरल तनाव युक्त जीवन में बीमारी भी देखा तेजी से बढ़त बा। ऐसे समय में योग जौन हो हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच की वृद्धि करल भैया।
0: बिल्कुल भैया एकदम सही बात कहो। देखो जौन भारत का प्राचीन संस्कृति बा एमे योग का कहीं न कहीं विशेष स्थान बा। हजारों बरिस पहले से ही जौन अपन ऋषि मुनि रहना भैया योग के माध्यम से स्वास्थ्य और संतुलित जीवन जियत रहना। देखा आज पूरी दुनिया योग के अपनाए लेले है। ये भारत का थाती है जौन
1: बिल्कुल
0: की पूरा विश्व भैया एके अपनौले बा। समझ ल कि जौन पाश्चात्य देश माया ऊ अपने संस्कृति के भी अपनावत हुआ। एके अपनाए का अपने स्वास्थ्य के भैया ऊ एक पहचान देवल चाहता। काहे से कि देख अगर योग करिहा तो निश्चित बा कि वो रोग रहित रही।
1: बिल्कुल। जहाँ तक कहते हैं भैया कि जैसे दूसर देश बाया, अपने देश की छोड़ जल जाए, दूसरे देश में जौन बा योग को पहचान बनत बा, योग की अपनावत हैं, जहाँ जौन की भारत से ही जन्म भल बा योग का भैया। लेकिन आज चूंकि जब हम अपने समाज के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात खटकल भैया कि जौन दूसरे देश का रिवाज बा, रीति बा, ओके हम लोग अपनावत चल जाते, और
0: बिल्कुल
1: योग के भुलाल चल जाते। तो ये सबसे बड़ी दुख का बात भैया लगल है। और आज ये बात का जरूरत बा कि हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और एकरे बदे हम जो हमारे देश का संस्कृति बा ओके संजोए कर रखल जाए, योग अपनावल जाए। योग से भैया जहाँ शरीर स्वस्थ रहला वहीं मन भी स्वस्थ रहला, तनाव कम होला और एकाग्रता में वृद्धि होला भैया।
0: बिल्कुल योग अपने जीवन का आधार बा। अगर नियमित भैया योग के अपने दिनचर्या में हम लोगन अपनाइब त निश्चित बा कि निरोग रहब। देखा बात बात कही तब ही अपने पंच भैया लोगन से हम लोगन करब। लेकिन आज अपने कार्यक्रम में ले का आल हवा ओके भी बताए दा।
1: बिल्कुल भैया, आज चूंकि रविवार का दिन हो तो आज के दिन काव्य पाठ सुनल जाला। तो एक क्रम में आज अरुण तिवारी भैया बाया कवि हैं, और मन मन सहन का भी क्रम हुई।
0: मानिक
1: लेकिन
0: चंद और उनके साथी लोगन के भैया कर्मा गावल जी अरुण कुमार भैया से भैया जो काव्य पाठ बा उनकर सुनल जाए। लेकिन ओकरे पहले कुछ संदेश बा, संदेश सुनकर तब काव्य पाठ सुनल जाए।
1: सुनल जाए भैया।
2: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हाँ, आप सबको एक मैं अपनी अभी हाल ही की लिखी हुई रचना सुनाना चाह रहा हूँ। ये एक प्रेरणादायी गीत है जो हमें जीवन में आने वाले मुश्किलातों से लड़ने के लिए, जूझने के लिए प्रेरित करता है। बाधाओं से ना घबराना, बाधाओं से ना घबराना, राही

बाधाओं से ना घबराना, जब अपनों से नाता छूटे, तन से तेरे शाखा टूटे, जब अपनों से नाता छूटे, तन से तेरे शाखा टूटे, माँ की छाया से दूरी हो, चाहे जैसी मजबूरी हो, सदियों से ऐसा होता है, पाने वाला ही खोता है, जगरीत यहाँ खोना पाना, बाधाओं से ना घबराना, राही यूं ही चलते जाना, बाधाओं से ना घबराना, ताकत ना हो तन में तेरे, कस के तुझको जर हो घेरे, ताकत ना हो तन में तेरे, कस के तुझको जर हो घेरे, मन की हिम्मत को मत खोना, अपने ही दुख पे मत रोना, जिसने पल भर को रोका है, ये आज समय का झोंका है, दुनिया को जख्म न दिखलाना।

घबराना, दुनिया में जीने की खातिर, दुनिया में जीने की खातिर, ये हाला पीने की खातिर, चींटी तक पल पल लड़ती है, आजीवन उद्यम करती है, कुछ भार उठाए जाती है, कुछ यत्न लगाए जाती है, जीवन का ये ताना बाना, बाधाओं से ना घबराना, राही यूं ही चलते जाना, बाधाओं से ना घबराना। और आगे देखें इसका जो अगला बंद है कि जब नन्हा दीपक जलता है, जब नन्हा दीपक जलता है, वो अंधियारे को खलता है, तिल तिल चाहे जल जाता है, वो तम को दूर भगाता है, लड़ता है झंझावातों से, घनघोर अमावस रातों से, तो तुम दीपक बन जलते जाना, बाधाओं से ना घबराना, राही यूं ही चलते जाना। और इस प्रेरणादायी गीत का जो अंतिम पद है उसे देखें, कितनों का नहीं सहारा है, कितनों का नहीं सहारा है, धारा है दूर किनारा है, पीड़ा सागर का छोर नहीं, उनकी रातों में भोर नहीं, फिर भी वे हंसते जाते हैं, जीवन दर्शन सिखलाते हैं, तू देख उन्हें ही मुस्काना, बाधाओं से ना घबराना, राही यूं ही चलते जाना, राही यूं ही चलते जाना। नौ वर्ष पे एक गीत के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, बीती बातों के आगे नए दिन के लिए क्या कुछ हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए, इस पे देखें भावों को।

में उड़ते उड़ते उड़ते जाएं, अभिनंदन हो नौ बिहान का। आओ सोचें हम फिर मिलकर, कैसे महके गुलशन खिलकर, इसका उसका तेरा मेरा, इसने क्यों कर हमको घेरा। आने वाले नूतन कल को, हर इस पल से हर उस पल को, नौ प्रभात के धवल वर्ण से, इंद्रधनुष जय

आशाओं के नील गगन में उड़ते उड़ते उड़ते जाएं, अभिनंदन हो नौ निहा। और आगे देखें, राम रहीम खुदाया भगवन, राम रहीम खुदाया भगवन, इन पे क्यों कर होती अनबन, सोचें क्या कुछ अब तक पाया, सोचें क्या कुछ अब तक पाया, जब से है ये सब दुहराया, क्या सोचेगा आने वाला। नई जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं साहब, क्या सोचेगा आने वाला, क्यों खोवेगा पाने वाला, सोचें कैसे जुम्मन अलगू, सोचें कैसे जुम्मन अलगू, फिर से

ज्ञान का, संकल्पों को पंख लगाएं, आशाओं के नील गगन में उड़ते उड़ते उड़ते जाएं। आगे देखें साहब, इसका अंतिम जो बंद है कि कर्म भाग्य की झंझावातें, कर्म भाग्य की झंझावातें, काली से काली हो रातें, काल चक्र को क्यों धिक्कारें, दुविधाओं को ठोकर मारें, आने वाले कल को देखें, बीते कल को भूल भुलाएं, और उम्मीदों के राजपथों पर बढ़ते बढ़ते बढ़ते जाएं। अभिनंदन हो नौ विहान का, अभिनंदन हो नौ विहान का।

और तैं यहां तेरा ठिकाना, तेरा आना तेरा जाना देख ले। तैं यहां तेरा ठिकाना, तेरा आना तेरा जाना देख ले। तेरा खोना तेरा पाना,

ना तुझे है और मोह के सांचे में ढलकर खुद बढ़ा उस ओर चलकर क्यों भला। स्तंभ सा आकार बनकर है खड़ा क्यों आज तन कर तू भला।

एक दिन जाना मुझे है, फिर विषमता की ये खाई किस लिए, दूरियां तूने बढ़ाई किस लिए। मौत तुझको ढूंढती है, मौत तुझको ढूंढती है, द्वार तेरा चूमती है, देख ले नाचती है झूमती है, घूमती है घूमती है, देख ले।

किस लिए, दूरियां तूने बढ़ाई किस लिए। और अंतिम बंद इसका देखें साहब, सत्य को स्वीकार कर ले, सत्य को स्वीकार कर ले, मृत्यु का सत्कार कर ले तू जरा। चैन से जीने न आया, चैन से जीने न आया, चैन से पगले तो मर ले तू जरा।

0: तुझे है एक दिन जाना मुझे, फिर विषमता की ये खाई किस लिए, दूरियां तूने बढ़ाई किस लिए। धन्यवाद।
1: पापा लाइए 3,000
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
2: है
1: नहीं, हाँ सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: मुने भैया,
2: हाँ भैया, देखा कितना बढ़िया अरुण तिवारी भैया का काव्य पाठ हम लोग सुन ली। इनके दहीजा धन्यवाद, लेकिन बिना देर के लिए मानिक चंद और उनके संघाती लोगन का गावल भैया कर्मा सुन ले।
1: सुन लिया भैया।

0: नहीं भैया,
1: हाँ भैया।
0: भैया देखा कर्मा सुनल गया मानिक चंद और साथी लोगन का। आ भैया देखा काली के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बता दिया जाए।
1: बताए दा भैया।
0: भैया कल जो है बाल अधिकार इनका हनन कानूनी अपराध विषय पर संजय यादव जो अधिवक्ता हैं उनसे जगत नारायण भैया बात बतही करी हैं, तो अपन पंच भाई लोग एक जरूर सुनी हैं।
1: बिल्कुल।
0: और देखा चूंकि हम लोग शुरू में स्वस्थ रह के बात करत रह जाए, तो स्वस्थ योग से तो करही के बाद साथे साथे भैया आहार भी हमन आहार पे भी ध्यान रखे के पड़ी, तब हम लोग स्वस्थ रह ली।
1: बिल्कुल सही बात बा। अब धीरे धीरे देखा अपन चले का समय जौन बा वो हो गल बा। अब अपने पंच भैया लोगन से हम
0: विदा
1: लोगन
0: लेवल
1: विदा
0: जाए
1: ले तो चले के तो सब
0: सब
1: पंच।
0: पन

अभी ग्रामीण सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल।

0: बचवा बोला जय हिंद।
1: भैया। हाँ भैया।
0: भैया देखा बचवा लोग जुटल बाया, और चूंकि छुट्टी का दिन बा और छुट्टी के दिन में बचवा लोगन के जवन समय मिला ला ना, वो ज्यादा से ज्यादा भैया खेल कूद और जवन भी उनकर सबसे पसंदीदा चीज रही उमिन समय देवे के कोशिश कराना। और देखा प्रसन्न बाया, लेकिन शुरुआत हम बचवा लोगन से जवन एक अच्छा उनके ना लगे वाली बात से करो भैया।
1: का हो
0: भैया, उनके सबसे ज्यादा जो पसंद रहला कि बाहर के चीज, बाहर के जवन भी खाना बा ओके खायल पियल जाए, स्वादिष्ट चीज खाल जाए। देखा एकरे बारे में सच्चाई बचवा लोगन के भी जाने के पड़ी। और आज चूंकि अभिभावक लोग भी ऐसे बहुत परेशान बाया, तो जवन आज का भैया बात बा जोने विषय पर वो बा बच्चे और जंक फूड।
1: बिल्कुल भैया,
0: आजकल बचवा लोग जवन है सबसे ज्यादा पिज्जा बर्गर चिप्स और तमाम तरह के जवन ठंडा पेय पदार्थ बा भैया ओके पसंद कराना। और जेकरे वजह से स्वादिष्ट तो उनके लगाला, लेकिन भोजन जवन है हमारे स्वास्थ्य बदे और बच्चों के स्वास्थ्य बदे सही नहीं भैया।
1: बिल्कुल सही बात कथो। अगर जंक फूड का बात कर तो आजकल के जमाने में भैया माने बचवा लोगन के जंक फूड से दूर रखल एक बहुत बड़ी चुनौती बा, लेकिन उनके बेहतर स्वास्थ्य और विकास बदे जरूरी बा कि कुछ प्रभावी तरीका जौन बा जौने से अपने बचवा लोगन के हम लोगन स्वस्थ रख सकीला। तो बचवा लोगन के स्वस्थ भोजन के तरफ हम लोगन के कहीं न कहीं प्रेरित करे के पड़ी।
0: लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न बचवा लोगन के मन में हुई भैया ना, कि आखिर मना तो करत है स्वास्थ्य के नुकसान कैसे कराला, कौन चीज नुकसान कराला, तो ओके बताए सबसे पहले जरूरी बात। सबसे पहले तो जंक फूड फूड जो खाता रेगुलर नियमित रूप से बचवा लोग खाते हैं उनकर मोटापा अनियमित रूप से बढ़ जाये, दांत खराब हो सकला, कमजोरी और थकान शुरू हो सकला, और पढ़ाई में जो ध्यान बा वो कम लगे लगी, मतलब एकाग्रचित जो होते हैं बच्चों लोग पढ़ाई लिखाई में या कोनो खेल कूद में वो भी खत्म हो जाए, और पेट संबंधी समस्या बढ़ जाए। शरीर का सबसे बड़ा जो नुकसान हुई कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बा वो कम हो जाए और बच्चों लोग हमेशा सुस्त रही हैं। तो सब चूंकि बचवा लोग खेल कूद में ज्यादा समय देवाना पसंद कराना, तो जब स्वस्थ रही हैं, जब सुस्त रही हैं, तो कहाँ से खेल पाई हैं। स्वस्थ रही हैं तब तो खेली हैं। तो बचवा लोग ये बात के ध्यान रखा कि जवन ये सब चीज बा जो उनकी जंक फूड में हम चर्चा के लिए कि पिज्जा बर्गर और जो भी कोल्ड ड्रिंक तमाम तरह का बा इसे दूरी बना के रखे, और जोन घरे का सामान बा रोटी सब्जी हरी सब्जी और चावल दाल ओकर सेवन ज्यादा से ज्यादा करें तब बस स्वस्थ रही है भैया।
1: बिल्कुल भैया सही बात कहत हो। अगर बचवा लोगन अक्सर माने जोन जंक फूड की तरफ आकर्षित होना ओकरे रंग और आकार से आकर्षित होना।
0: बिल्कुल
1: भैया, अगर वह आकर्षण हम लोगन अपने घरे खाना में ले आई तो निश्चित बाकी बचवा लोगन ओकरे तरफ आकर्षित हुई हैं और खाई हैं। जैसे भैया हम लोगन फलन का चाट बनाई सकीला।
0: बिल्कुल भैया,
1: कैसे कि फल अलग अलग आकार में काट कर शहद या चाट मसाला डाल कर भैया ओके बनाए का बचवा लोगन के आकर्षित कर सकीला जा, दे सकीला जा। ओकरे साथे साथे भैया अगर जैसे पिज्जा अपन बचवा लोगन पसंद करता तो ओकरे बदे सब्जी पराठा पिज्जा के जगह रंग बिरंगी जो सब्जी बाई ओहन का भैया पराठा या चिल्ला बना का अगर उनके देही हम लोगन तो निश्चित बाकी उनके स्वास्थ्य बदे अच्छा रही। देखो बर्गर का भी बात हम लोगन करीला, अब बचवा लोगन खूब खाना तब बाहर के बर्गर की जगह पर जोन बचवा लोगन हुआ भैया वो घरे ही बनल टिक्की और ताजी सब्जी का उपयोग करी है तो निश्चित बाके उनके बदे अच्छा रही। देखा बचवा लोगन वही सिखाना जोन देखाना।
0: बिल्कुल,
1: अगर घर का बड़ सदस्य फल और सब्जी खाई हैं तो बचवा लोगन भी स्वाभाविक रूप से वही के तरफ आकर्षित हुई हैं। अगर घर घरे में भैया चिप्स या कोल्ड ड्रिंक लियोले के बजाय नारियल पानी या नींबू पानी अगर अपन
0: शरबत भैया
1: हाँ घरे रखल जाए तो निश्चित बाकी बचवा लोगन वही की तरफ आकर्षित हुई हैं। भैया हो देखा अगर अपन बचवा लोगन मने कुछ कैल चाहत आया, मने अच्छा खायल चाहत आया, स्वास्थ्यवर्धक चीज ग्रहण कैल चाहत आया, तो इनमें माता पिता के जौन भूमिका बा ई बहुत महत्वपूर्ण माना
0: जाला। और उ महत्वपूर्ण भूमिका में एक चीज और जोड़ल चाहब, चूंकि बचवा लोग जब खाना तो अक्सर अभिभावक लोग भी खाना तो उनकर आदत हो गेल बा कि टीवी पर भैया चालू हो गेल, मोबाइल देखत देखत मतलब खाना खाए लगा ना, तो ई सबसे बड़ा दुष्प्रभाव एकर होला। तो हो सके का पूरी तरह से हम तो कहब कि टीवी या मोबाइल देख कर न तो खुद खाना खाए और न बच्चन के खाए देवे, मतलब एकदम शांत मन से भोजन ग्रहण करें। और जैसन कि आप फल के चर्चा कही देना कि मौसमी फल बा, तमाम तरह के व्यंजन बना के बच्चों लोगन के दे सकाना, कोल्ड ड्रिंक के जगह शरबत का आप बात कहना, मंठा भी दे सकाना, टिफिन में पौष्टिक भोजन रख तमाम तरह का जोन व्यंजन बा ओकरे तहत बच्चों लोगन के दिहल जा सकला। और सबसे बड़ी चीज की बच्चों लोगन के साथ बैठ के भोजन करल जाए तो बच्चों लोगन में का हो कि रुचि भी पैदा हुई, और जब चूंकि माता पिता खुद बैठ के खाई तो एक तरह से प्यार आपसी सामंजस्य भी बढ़ी। चूंकि देखा बच्चों लोग देश का भविष्य है और बचपन के स्वस्थ रहब सबसे बड़ा जरूरी बात, समाज के और देश की अगर मजबूत बनावक बात तो उनकर स्वस्थ रह बहुत जरूरी बात भैया।
1: बिल्कुल, देखें बच्चों लोगन के अगर स्वस्थ बनावे के बा तो अपने घरे में जौन रसोई बा भैया ओकर मदद हम लोगन के लेवे के चाहिए। जब बच्चों लोगन के खाना बनावे के प्रक्रिया में कुछ ऐसा चीज बा ओके हम लोगन शामिल कर लें, जैसे सब्जी बा, सलाद बा, ओके धोई सजाई खाना बचवा लोगन के दही, तो जब वो थोड़ा आकर्षक ढंग से सजाए के हम लोगन देव तो बचवा लोगन बड़े चाव से ओके खाई है। उनमें भैया स्वस्थ चीज रही तो स्वस्थ भोजन में उनकर जो रुचि बा वो बढ़ी। देख जब रुचि बढ़ी खाई है पी है तो धीरे धीरे उनके आदत में भी परिवर्तन होत चल जाई।
0: पौष्टिक आहार करी है तो स्वस्थ रही है, और कोनो भी काम अगर करत है चाहे खेल कूद हो पढ़ाई लिखाई हो हर चीज में मन उनकर लगी। आज भैया बच्चों लोगों से आगे भी बात करल जाये हमन, लेकिन कार्यक्रम में काका हो यो के बारे में बता दिया जाए। तो देखिये शिक्षण अधिगम में सहायक ICT मनीष पटेल अध्यापक है, उनसे अख्तर अली भैया बात बात कही गिले और बच्चों के मुख से भी बाल गीत सुन जाये हम लोग। लेकिन सबसे पहले शिक्षण अधिगम में सहायक ICT मनीष पटेल जो अध्यापक हैं,
1: उनकर जानकारी लेवल जाए, लेकिन ओकरे पहले एक संदेश बा, संदेश सुन ले जाए, ओकरे बाद जानकारी
0: सुनल जाए।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
0: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आधुनिक युग विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन के हर एक क्षेत्र के कार्य को प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से शिक्षा भी अछूती नहीं रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की नवीन शाखाओं का विकास हो रहा है। जरूरत है इन तकनीकों के इस्तेमाल करने की, जो ICT के प्रयोग से संभव हो पा रहा है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक बच्चों को शिक्षित करने में कितना कारगर है, और हम इस तकनीक को कैसे आत्मसात कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक मनीष पटेल जी। आप सहायक अध्यापक करमसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं। मनीष जी, स्वागत है अपने स्टूडियो में।
7: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: वैसे तो शिक्षण कार्य में कई तरह के माध्यमों का प्रयोग शुरू से होता आ रहा है, बोल करके, चित्र दिखा करके, खेल के माध्यम से, गाने गा करके माध्यम से, और भी कई तरह के कहानियां सुना करके। लेकिन इधर बीच कुछ नई तकनीकों का भी विकास हुआ है, जिसमें कि ICT का भी नाम हम लोग सुनते हैं। तो मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे अपने आम बोलचाल की भाषा में, ये ICT क्या है?
7: देखिए, जब हम तकनीकी का प्रयोग शिक्षा में करते हैं, तब हम उसे ICT के द्वारा शिक्षण करना कहते हैं। वैसे आपने बताया ही कि ICT का जो अर्थ होता है वो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का आदान प्रदान करना, और शिक्षा में भी हम यही करते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कोई चीज़ अगर हमें बच्चों को बतानी होती है, कोई सूचना देनी होती है, तो हम अगर उसे तकनीकी के माध्यम से अगर हम बच्चों को देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि ICT का प्रयोग हम शिक्षा में कर रहे हैं। वैसे ICT का प्रयोग अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी हो रहा है।
6: तो जैसे कि आपने बताया कि ICT का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ICT कितना उपयोगी साबित हो रहा है?
7: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुतायत क्षेत्रों में ICT का प्रयोग हो रहा है, तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, व्यापार में प्रयोग हो रहा है, सुरक्षा में, सामाजिक संपर्क स्थापित करने में, तमाम तरीके से इसका प्रयोग हम आजकल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम शिक्षा में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। बल्कि ये ICT इन एजुकेशन देखा जाए तो आज से नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि जब से रेडियो का प्रादुर्भाव हुआ है तब से है, बल्कि उससे भी पहले से है। जैसे जब हम शिक्षा में रेडियो का या माइक का या टेप रिकॉर्डर का, टीवी का, प्रोजेक्टर आदि का उपयोग शिक्षण कार्य में करते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि हमने ICT का प्रयोग शिक्षण के लिए किया। और आजकल हम लोग जब मोबाइल का प्रयोग, लैपटॉप का भी प्रयोग करते हैं, आजकल स्मार्ट क्लास सेटअप भी आ गया है, वो स्कूलों में लग गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें हैं जो ICT का प्रयोग शिक्षण कार्य में करने में सक्षम है, और इस नई तरीके से हम लोग शिक्षण कार्य को कर पा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कर रहे हैं।
6: किसी भी तकनीक को इस्तेमाल करने से पहले उसे सीखना पड़ता है
7: जी।
6: और आज के युग में हालांकि सभी लोग बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन कुछ हमारे जो शिक्षक हैं वे अभी भी हिचकिचा रहे हैं कि कैसे हम इसमें कदम बढ़ाएं। तो एक सामान्य शिक्षक जो ICT के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जो हिचकिचाहट बनी हुई है, और यह एक नई विधा भी है शिक्षण की, तो शिक्षक कैसे निपुण करें अपने आप को, कैसे कदम बढ़ाएं?
7: देखिए, यहाँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक प्रबल इच्छा शक्ति इंसान से देखिए कुछ भी करा सकती है। जैसे शिक्षक बनने से पूर्व भी हमने शिक्षण की तकनीकों के बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम धीरे धीरे उन्हें सीखते हैं। हम इच्छा रखते हैं कि हम एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक बन जाएं। उसी प्रकार से ICT भी है, कुछ विभागीय ट्रेनिंग, कुछ ऑनलाइन कोर्स, कुछ विभिन्न ओपन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जहां आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं। लगातार अध्ययन करना और उसका अनुप्रयोग करते रहना, आप ICT में निपुण हो जाएंगे। मैंने कुछ शिक्षकों को ICT शिक्षण में शून्य से शिखर तक पहुंचते हुए भी देखा है। तो अगर हिचकिचाहट अपनी खत्म कर लें और प्रबल इच्छा शक्ति अपनी रखें तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी के साथ शिक्षक जो है वो ICT का प्रयोग शिक्षण कार्य में कर पाएंगे।
6: जब उनके मन में बात आती है कि हम भी सीखें, हम भी आगे बढ़ें, चूंकि ये बहुत विशाल क्षेत्र वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत करें वे लोग?
7: देखिए, जहाँ तक शुरुआत करने की बात है तो आप अपने स्मार्टफोन से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन से कुछ वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं। इसमें कुछ ऐप्स हैं जो शिक्षण कार्य के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। और अगर आपके पास ऑडियो सिस्टम हो तो वो भी ICT है। अगर ऑडियो सिस्टम हो तो उसके द्वारा भी आप बच्चों को उसमें कुछ ऑडियो खुद से कर लें या कहीं से डाउनलोड कर लें, उसके माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत करने के लिए भी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल से शुरू कर लीजिए, अपने ऑडियो सिस्टम से शुरू कर लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसका प्रयोग कर लीजिए। और अगर हालांकि यहाँ तक तो आप खुद के संसाधन से आप इतने कार्य कर सकते हैं, लेकिन जैसे स्मार्ट क्लास की बात हुई तो वो आपको कहीं से, या आप जिस विभाग में भी काम करते हैं, जिस संस्था के थ्रू काम करते हैं, वो संस्था आपको प्रोवाइड कराए तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। उसको सीखने की ज़रूरत होगी तब आपको। तो शुरुआत करने की जहाँ तक बात है तो मैं कहूँगा कि स्मार्टफोन बेहतर है। स्मार्टफोन से शुरू करें और ये जो डिवाइस है ये अपने आप में सक्षम है कि किस तरीके से आप इसकी शुरुआत करें। और जब आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरह का पड़ रहा है, तो आप उसके आधार पर अपने शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं।
6: मनीष जी, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं और अपने शिक्षण कार्य में इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत से बच्चे भी सुन रहे हैं, अध्यापक भी सुन रहे हैं। कुछ ऐसा उदाहरण दें किसी शिक्षण के लिए, जैसे हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिसको कि आपने इस विधि से अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे रुचि लेकर के पढ़ते भी हैं और क्लास में एकाग्र भी रहते हैं और सीखते भी हैं।
7: देखिए, इस तरह के बहुत से प्रयोग मैंने किए। पहले तो हमारे विद्यालय में किसी भी प्रकार का इस तरह से ICT से संबंधित संसाधन नहीं थे। शुरुआत मैंने जो है वो स्मार्टफोन से ही की है। विद्यालय में स्मार्टफोन था, वैसे मैं कंप्यूटर की जानकारी मुझे है तो घर पर मुझे उपलब्ध है, लेकिन पहले शुरुआत जो है वो मैंने स्मार्टफोन से की। इसमें पहले छोटे छोटे वीडियोज़ दिखाया करता था उनको, बच्चों को, शिक्षण से संबंधित। और एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें जो है एक जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता होती है। जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता से संबंधित, या ये कहें कि मुझे जिम्नास्टिक के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, पहले मैंने जानकारी प्राप्त की, और चूंकि मैं खुद करके उन्हें दिखा नहीं सकता था जिम्नास्टिक बच्चों को, तो मैंने वीडियो डाउनलोड किया
6: जी।
7: और वो वीडियो मैंने बच्चों को दिखाया और बच्चे उसको देखकर बहुत जल्दी सीख गए। और इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात से कि ये वीडियो कितना कारगर साबित हो रहा है, और बच्चों ने मंडल स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया इस वीडियो को देख करके। तब मुझे वास्तव में ICT की ताकत का पता चला। तो ये तो एक जिम्नास्टिक का उदाहरण हुआ। कक्षा कक्ष में भी इस तरह के तमाम प्रयोग मैंने किए हैं और उससे संबंधित शोध भी किया है, और उस पेपर को मैंने जो है NCERT में और RIE भुवनेश्वर में भी शोध पत्र को अपने पढ़ा है। तो जो क्लासरूम में मैंने प्रयोग किया है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे जो हमारे बच्चे हैं उनको अंग्रेजी का उच्चारण करने में तकलीफ होती है, सही उच्चारण नहीं कर पाते, तो मैं क्या करता था कि क्लास में जो उनके लेसन है उनको मैं एक बार पढ़ता था और बच्चों से उसे बोलवाता था ताकि वो बोलें बार बार और उनके जो है जबान पे ये जो अंग्रेजी भाषा है वो चढ़ जाए। तो हर बार मुझे क्लास में रहना पड़ता था। एक बार मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया, पूरे लेसन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और जब दूसरी बार मुझे उसी पाठ को पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने सिर्फ उसे एक ऑडियो सिस्टम के थ्रू क्लास में चला दिया। अब मुझे उस क्लास में भी रहने की ज़रूरत नहीं थी और बहुत आसानी के साथ बच्चे उसको कई बार रिपीट कर रहे थे और मैं अपने दूसरे कक्षा में भी समय दे पा रहा था। तो कम शिक्षक जहाँ पर हैं वहाँ पर भी इस तरह से इसका उपयोग जो है कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह के तमाम उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि ICT जो है वो बहुत एक ताकतवर एक शैक्षिक इंस्ट्रूमेंट या टूल कह लें, उसमें कारगर साबित हो रहा है।
6: जी जी, तो अंत में चलते चलते जो प्राथमिक और जूनियर स्तर के जो शैक्षिक कार्य करने वाले अध्यापक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको अपनाने से शिक्षण कार्य कितना सुगम हो जा रहा है और बच्चों के लिए कितना ग्राह्य हो जा रहा है?
7: देखिए बच्चों को भी जब आप वीडियो दिखाते हैं या कोई गतिविधि इस तरह की कराते हैं तो उनको तो बहुत आनंद मिलता है।
6: जी, जी, जी,
7: और जहां तक शिक्षक बंधुओं की बात है तो वो हिचकिचाए नहीं इसको अपनाने में, अपनी इच्छा शक्ति है उसको थोड़ा सा बढ़ा कर रखें। और जहां तक सीखने की बात है तो बहुत से कोर्स भी अवेलेबल हैं और बहुत से ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट उपलब्ध करा देते हैं, जो बच्चों को आप सिखा सकते हैं, चाहे गणित हो, या मैं तो गणित का अध्यापक हूं तो गणित में ज़्यादा चीज़ों को मैं खोजता रहता हूं, और बहुत सा खोजा और मैंने और मिला भी, और बहुत सी ट्रेनिंग भी मैंने की, उसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई, उन सारी चीज़ों का संकलन कर लिया है हमने। जैसे आप अगर विज्ञान की बात करें तो एक PhET सिमुलेटर है, उसमें आप विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं उनके हिसाब से एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो कि ओपन सोर्स है, ओपन रिसोर्स के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका कोई शुल्क आपको देना नहीं पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लैब भी, वर्चुअल लैब भी अवेलेबल हो गई है, अब तो सारे आप प्रयोग जो है वो आप चाहें तो स्मार्ट क्लास पे या आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे बच्चों को उपलब्ध करा करके उसको करा सकते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को कराएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों को भी बड़ा आनंद आएगा और आपको भी बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये संप्रेषण का एक नया तरीका हो जाएगा। और जो लैब आदि हैं वो अगर आप सेटअप नहीं भी आप कर पाए हैं तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी स्मार्ट क्लास में या कहें कि ICT की विधा में
6: जी।
7: और ICT का देखिए सबसे जो अच्छा उपयोग है वो ये है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ बताना चाहते हैं बच्चों को, जैसे कोई चीज़ बहुत तेज है जिसे आप क्लासरूम में नहीं ला सकते, या कोई चीज़ बहुत स्लो है जिसको आप बच्चों को उतनी देर तक रख कर दिखा नहीं सकते हैं, या कोई बहुत विस्फोटक चीज़ है वो आप अगर दिखाना चाहते हैं वो आप क्लासरूम में ला नहीं सकते, वो सारी चीज़ें ICT आपको क्लासरूम में ला के देती है।
6: जी जी जी। अब उनको देखना है कि ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी के लिए
7: वो आप उसमें दिखा देंगे, आप वीडियो चला दीजिए
6: जी,
7: उसका।
6: जी जी, बड़े बड़े जानवर हैं और भी चीजें चलें, बड़ी अच्छी चीज है और बस इसको जरूरत है अब बस कदम बढ़ाने की और शुरुआत करने की। तो श्रोताओं देखें, आज हमारे साथ थे करमसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक मनीष पटेल जी। तो मनीष जी, आज आपने आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: खैर,
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मुने भैया।
3: हाँ नखड़ो भैया।
2: भैया देखो, मनीष पटेल जो अध्यापक रहना, उनसे शिक्षण अधिगम में सहायक ICT के विषय पर अक्तर अली बात बात कही करत रहना है। और
3: भैया इतना बढ़िया जानकारी सुन लीजा, भैया के दही जा धन्यवाद। लेकिन देखो अपन बचवा लोगन भी तैयार हुआ तो इनसे भी कुछ सुन ले।
2: सुनल जाए।

0: नहीं भैया,
1: सोने का चिड़िया रहले हमरो वो तनमा, जहाँ जन्म ले श्री राम हो।
0: वाह भैया, बसवा लोगन कितना मार्मिक भैया चित्रण करें अपने गीत के माध्यम से।
1: बिल्कुल।
0: और देखा हर बसवा लोगन कोशिश कराना के अच्छा से अच्छा करें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, अपने रुचि के हिसाब से हर बसवा कराना। लेकिन एक चीज हम और जुड़ल चाह बसवा लोगन से कि जौन भी घटनाक्रम अपने आसपास होत बा, अपने देश में होत बा, ओकर भी जानकारी रखब बहुत जरूरी बा।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे भैया अभी 5 राज्यन में विधानसभा के चुनाव भयल मार्च अप्रैल में हो, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम, पांडिचेरी का, तो देखा जानकारी रखे के चाहिए। ये सब चीज जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान का बात हो। अब देखा पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीट रहल है भैया, विधानसभा सीट रहल है, जमीन से 148 सीट मतलब बहुमत का सीट रहल। और सबसे बड़ी चीज भैया जोने राज्य के बात हम करल चाहते हैं, तमिलनाडु जमीन भैया एक ऐसा पार्टी आयल के नान द्रविड़ पार्टी रहल और टीवी के जगह कहल और ओकर मुख्यमंत्री बनत है, तो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक।
1: बिल्कुल भैया, आप देखा कार्यक्रम का समय हो गल, बचवा लोगन से विदा लही जा चले के, तो बचवा बोला जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के उग्र केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है 102.7 एफएम पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इंदिवर के लिखे गीत के साथ। संगीत दिया है राजेश रोशन ने, आवाज है नितिन मुकेश की और फिल्म है दरिया दिल।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: इस समय आकाशवाणी ओबरा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत आइए सुनते हैं पंकज उधास की आवाज में, इंदीवर का लिखा हुआ। संगीत दिया है बापी लहरी ने और फिल्म है हम इंतजार करेंगे।

जेंटलमैन फॉर द हैप्पी कपल, उनके दोस्त इंद्रजीत सक्सेना एक नजराना पेश करेंगे।

कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना फरी फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य को गीत लिखा था इंदीवर ने, संगीत जतिन ललित का था। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

0: आइए आपको जानकारी दे दें हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का, ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर और रात्रि 9:30 पर। और सबरस का कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। श्रोताओं, हम आपको पुनः बता दें, रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। तो ये थी जानकारी हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

0: काट दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियुक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे राहत इंदौरी के लिखे इस गाने को। आवाजी थी कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म थी खुददार। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। अगला गीत आइए सुनवाते हैं आपको नागमणी फिल्म से अनुराधा पौडवाल के स्वर में। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
0: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
0: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उबरा का प्रसारण, कार्यक्रम है सबरस। समय हो गया है शाम के 7:43:14। अगला गीत आइए सुनते हैं सनम बेवफा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उबरा का प्रसारण, कार्यक्रम है सब रेड। अब आइए सुनते राजा फिल्म, राजा बाबू फिल्मी पूर्णिमा और उदित नारायण को। गीत लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का है।

तो चोर मैं सिपाही कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना इस फिल्म में अलका याग्निक कुमार सानू को। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत समीर सेन का था। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सब रस अभी ही समाप्त होता है।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो गया है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं गैर फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले राम शंकर की आवाज में ये गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
1: आरबीआई कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: दीदी नौकरी लग गई।
8: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
7: हाँ दी, नया मोबाइल।
8: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
7: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
8: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
7: परदीप
8: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
7: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
8: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आप सुन रहे आकाशवाणी उबरिया का प्रसारण कार्यक्रम है सुगम संगीत, इसमें आप सुन रहे गैर फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं अब हंस राज हंस की आवाज में ये अगला गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन से। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आवाज है आशा भोसले की और फिल्म है धन दौलत।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत राजेश रोशन का है। आवाजें हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की। फिल्म है आपके दीवाने।

शंकर जयकिशन की संगीत निर्देशन में भी आप सुन रहे थे सिंगार का लिखा यह गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म थी गरम खून। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए चंद गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में ये गजल। इस गजल को लिखा है मंजूर अहमर ने।

0: अपने घर।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगी। अगली गजल आइए सुनते हैं, चिराग हसन हसरत की लिखी हुई, मिताली सिंह की आवाज में।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे इब्राहिम अश्क की लिखी ये गजल चंदन दास की पुरकशिश आवाज में। इसी गजल के साथ सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीर जी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
5: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
4: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that Centre will continue to work with greater speed to realize your dreams.
5: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
4: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.

0: बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफर 90 वर्षों का। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनमानस के साथ आकाशवाणी का एक बहुत 90 वर्षों का गौरवशाली जो वर्ष रहा है वो बहुत ही भरोसेमंद वर्ष रहा है, एक मजबूत रिश्ता रहा है हमारा और आपके बीच। अगर ये रिश्ता देखें तो संस्कृति और संस्कृति का संगम भी है। 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने देश की भाषाई विविधता को 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारित कर संस्कृति को जोड़ा भी है। ये दिल से दिल का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति को आदान प्रदान करने वाला भी रिश्ता है। 3 अक्टूबर 1957 को शुरू हुई विविध भारती सेवा ने हिंदी फिल्म संगीत छाया के जयमाला और हवा महल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से घर घर में अपना स्थान बनाया। वहीं लोकल प्राइमरी चैनल ने अपने यहाँ के लोकल कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचाया, उनकी समस्याओं को भी जनमानस तक पहुंचाया और साथ ही गीतों के माध्यम से अच्छे अच्छे मनोरंजन भी करवाए। और देश विदेश की जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, वो आप तक पहुंचाई, जिससे हमारा और आपका रिश्ता हुआ और भी मजबूत। अगर पूरे 90 वर्षों को देखें तो बड़ा अविश्वसनीय लगता है ना कि हमारा और आपका जो ये रिश्ता है कितनी खूबसूरती से आज तक हम और आप निभाते चले आए हैं। आपका विश्वास ही हमें और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का हौसला देता है। और आपके माध्यम से जो भी बातें होती, आपकी जो शिकायतें होती हैं, उसे भी हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं और अपने कार्यक्रमों को और खूबसूरत बनाते हैं आपके लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे भरत व्यास के लिखे गीत को। संगीत दिया था एसएन त्रिपाठी ने, आवाज थी मुकेश की और फिल्म थी रानी रूपमती। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण, यादों के झरोखों से सफर 90 वर्षों का। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही ऐसे ही बना रहे। डिजिटल युग में भी समाचार और कृषि कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी श्रोताओं का सबसे भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। और अगर हम मनोरंजन और शिक्षा की बात करें तो संगीत, नाटक और समाचारों के माध्यम से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए ये संस्था निरंतर सेवा में है आपके लिए।
1: मेरे जान प्यार किसी से हो ही गया।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे गीत को। आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म थी यहूदी।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आकाशवाणी के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी का शाब्दिक अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज, जो हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। तो चलिए इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। दीदार फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज में संगीत दिया है नौशाद ने।

आकाशवाणी, ये नाम रेडियो की उस शक्ति को दर्शाता है जिसके माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के संदेश देश के हर कोने तक पहुंचते हैं। आज आकाशवाणी 23 भाषाओं और 190 बोलियों में प्रसारण कर देश की लगभग 98% आबादी तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है।

करते हैं कि आने वाला समय भी इतना ही खूबसूरत होगा। जैसे पहले से रिश्ता निभता आया है, वैसे भी आगे भी हम निभाते रहेंगे आपके साथ। हमारा ये आपका रिश्ता और भी खूबसूरत होगा। कैसे? गीतों के माध्यम से, अच्छी अच्छी जानकारियाँ देकर, और आपकी शिकायतों पर भी हम काम करेंगे। तो हर तरह से हमारा रिश्ता हुआ ना मजबूत। तो बने रहिए आकाशवाणी उबरा के साथ। अब इस कार्यक्रम से इजाजत चाहती हूँ। आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की झरोखों से सफर 90 वर्षों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की झरोखों से सफर 90 वर्ष का। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शु के लिखे इस गाने को। आवाजें थी कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की। फिल्म थी छुपा रुस्तम। और अब आइए सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में कतल शुफाई के लिखे इस गीत को। आवाज है अलका याग्निक की और फिल्म है ढाल।

ढाल फिल्में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को। शब्द रचना थी कतील शिफाई की और संगीत दिया था अनु मलिक ने। आकाशवाणी उबरिया से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत। समय हो गया है रात्रि के 9:44 और 29 सेकेंड। अगला गीत आइए सुनते हैं माशूक फिल्म में कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को। शब्द रचना इंदीवर की और तर्ज बनाई है श्याम सुरेंद्र ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नवाब आरजू के लिखे इस गीत को। आवाजें ही साधना सरगम और कुमार सानू की फिल्म है गैम्बलर।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10 बजने वाले कुछ एक क्षणों में हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein Veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज ए चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
2: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत

0: करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।